0: 98.5
1: 2000 FM.
2: क्या आप ऐसे काम की खोज में हैं जो आपको बहुत कुछ दे सके? ज्यादा जोश, ज्यादा ठोस काम, ऐसा काम जिससे आप अपने स्थानीय समुदाय में बदलाव ला सकें? पुलिस रिक्रूट्स सर्च करें, NSW पुलिस फोर्स। हमारा काम बहुत मायने रखता है।
3: 2000 स्टेशन स्पॉन्सर।
4: भारी बारिश और फ्लाइट डायवर्शन। दिल्ली NCR में तेज बारिश और तूफान के कारण कई उड़ानें डाइवर्ट करनी पड़ी और IMD ने रेड अलर्ट जारी किया। इससे हवाई यातायात और शहर के सामान्य जीवन पर असर पड़ा है। नेपाल में बाढ़ भारत के लिए चेतावनी। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को लेकर विशेषज्ञों ने चेताया कि इसका असर भारत के हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और नदियों पर भी पड़ सकता है। FBI वांटेड फ्रॉडस्टर की पंजाब में गिरफ्तारी। जालंधर पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को पकड़ा है जो अमेरिका में $6,00,000 की धोखाधड़ी के मामले में FBI द्वारा वांटेड था। सोनिया गांधी की आत्मकथा अब हार्पर कॉलिंस प्रकाशित करेगा। पेंगुइन द्वारा संपादकीय मतभेदों के चलते पीछे हटने के बाद अब हार्पर कॉलिंस इंडिया सोनिया गांधी की आत्मकथा 10 नवम्बर को प्रकाशित करेगा। जानते हैं अब ऑस्ट्रेलिया की खबरें। नेपाल तिब्बत बाढ़ में लापता ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की खोज तेज। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद 43 से अधिक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक लापता बताए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई रेस्क्यू टीम नेपाल पहुंच चुकी है और खोज अभियान तेज किया गया है। यह खबर पूरे देश में चिंता और चर्चा का विषय बनी हुई है। बाथला ग्रुप का वित्तीय संकट, सिडनी हाउसिंग मार्केट पर असर। सिडनी की बड़ी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी बाथला ग्रुप गंभीर वित्तीय संकट में है। अगर कंपनी को तुरंत फंडिंग नहीं मिली तो इसे लिक्विडेशन में जाना पड़ सकता है। इससे सिडनी के हाउसिंग मार्केट में अस्थिरता बढ़ने की आशंका है। स्मार्ट ग्लासेस पर संपादित प्रतिबंध की चर्चा। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कहा है कि फिलहाल स्मार्ट ग्लासेस के आयात पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर बहस तेज है। यह तकनीक बच्चों और युवाओं पर प्रभाव को लेकर भी चर्चा में है। सिडनी में शार्क अटैक, महिला की चमत्कारिक बचत। सिडनी की एक महिला पर 4 मीटर लंबे शार्क ने हमला किया, लेकिन उसने बहादुरी दिखाते हुए खुद को बचाया। राहगीरों की मदद से उसकी जान बची। यह घटना सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों में लगातार चर्चा में है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया उपचुनाव में वन नेशन की जीत। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के सीक्रेट हार्बर उपचुनाव में वन नेशन पार्टी ने जीत दर्ज की है। इससे राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा हुई है और विश्लेषक इसे पार्टी की बढ़ती पकड़ के संकेत के रूप में देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई स्कूलों में एंटी बॉय पाठ्यक्रम पर बहस। नेशनल्स नेता मैट कैनवन ने कहा कि स्कूलों में पढ़ाया जा रहा कंसेंट एजुकेशन लड़कों को गलत दिशा में ला रहा है। इस बयान ने शिक्षा नीति, सोशल मीडिया एल्गोरिदम और युवा व्यवहार पर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। कॉरपोरेट ट्रैवल मैनेजमेंट में $100 मिलियन का घोटाला, शेयर 80% गिरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख ट्रैवल सर्विस कंपनी कॉरपोरेट ट्रैवल मैनेजमेंट के खिलाफ बड़े वित्तीय घोटाले की जांच चल रही है। खबर सामने आते ही कंपनी के शेयर में 80% से अधिक की गिरावट आई। यह मामला कॉरपोरेट गवर्नेंस पर गंभीर सवाल उठा रहा है। आइए अब जानते हैं दुनिया की कुछ खबरें। नेपाल हाइड्रो पावर टनल में फंसे लोगों का चमत्कारिक बचाव। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद हाइड्रो पावर टनल में कई लोग फंस गए थे। 9 दिनों बाद 2 लोगों को जीवित बाहर निकाला गया, जिसे मानवता और साहस की बड़ी जीत बताया जा रहा है। यह घटना वैश्विक मीडिया में लगातार सुर्खियों में है। ईरान पर अमेरिका का दबाव बढ़ा, पिकेक्स माउंटेन पर संभावित हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संकेत देते हैं कि अमेरिका जल्द ही ईरान के पिकेक्स माउंटेन को निशाना बनाने जा रहा है। यह बयान मध्य पूर्व में तनाव बढ़ाने वाला माना जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का केंद्र है। रूस का यूक्रेन सुरक्षा मुख्यालय पर ड्रोन हमला। कीव में यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU मुख्यालय पर ड्रोन हमला किया, जिससे संघर्ष और तेज हो गया। यह हमला यूरोप और अमेरिका में सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। ब्रिटेन में गिनेल फराज की पार्टी में बड़ा घोटाला। रिफॉर्म यूके पार्टी के शीर्ष अधिकारियों को विदेशी फंडिंग से जुड़े एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद निलंबित कर दिया गया है। इससे ब्रिटेन की राजनीति में हलचल मच गई है और पार्टी की छवि पर बड़ा असर पड़ा है। रोमानिया में एंड्रयू टेंट पर नाबालिगों की तस्करी का आरोप। रोमानियाई अभियोजकों ने एंड्रयू टेंट पर नाबालिगों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अभियोग दायर किया है। यह मामला सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञों के बीच व्यापक चर्चा में है। मैक्सिको में 17 टन मेथ की ऐतिहासिक बरामदगी। मैक्सिको की सुरक्षा एजेंसी ने सिनालोआ में 3 गुप्त लैब से 17 टन मेथामफेटामाइन बरामद की है। यह देश के इतिहास की सबसे बड़ी ड्रग बरामदगी में से एक है और वैश्विक एंटी ड्रग एजेंसियों का ध्यान आकर्षित कर रही है। इंडोनेशिया में जंगल की आग। सिंगापुर से 4 गुना क्षेत्रफल जितना इलाका जला। इंडोनेशिया में लगी भीषण जंगल के आग ने विशाल क्षेत्र को प्रभावित किया है। विशेषज्ञ इसे जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे का संकेत मान रहे हैं। यह खबर पर्यावरण और एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख चर्चा का विषय है। इसी के साथ आज के समाचार यहां समाप्त होते हैं। सुनते रहिए दर्पण रेडियो। धन्यवाद।
0: आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 MHz पर। आज आपके साथ स्टूडियो में हैं मैं प्रदीप कुमार सिन्हा, शैलजा जी और आशिमा जी। आप सभी का हमारे रेडियो प्रोग्राम में स्वागत है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे नेपाल त्रासदी के बारे में। नेपाल त्रासदी इतनी भयंकर रही कि वहाँ पर इतने लोगों की मृत्यु हो गई, तो हमारी शुभकामनाएं ये हैं कि वहाँ पर बाकी लोग जो मिसिंग हैं वो भी मिल जाएं, और हमारी श्रद्धांजलि उन लोगों को जिनको सदगति प्राप्त हुई है। तो हम आज के कार्यक्रम में बहुत कुछ लाए हैं। शैलजा जी आज के कार्यक्रम में हमारे एक खास मेहमान हैं
5: जी,
0: उनसे हम मिलवाएंगे।
5: बिल्कुल।
0: और इसके अलावा हमारे एक रंजना जी ने एक वार्ता भेजी है और सरिता जी ने भी वार्ता भेजी है, तो हम उसके बारे में तो बात करेंगे। और हम आज फादर्स डे है, सभी फादर्स को, सभी पापा लोगों को हम लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि आपका दिन बहुत ही सुंदर बीतेगा अपने बच्चों के साथ। तो हम ये भी चाहते हैं कि यदि आप अपने पापा के बारे में कुछ कहना चाहते हैं रेडियो पर ऑनलाइन, तो हमें फ़ोन कीजिएगा। नंबर है 04133859976। लेकिन आप फ़ोन करने से जो हमारा भजन का कार्यक्रम पूरा हो जाए उसके बाद करिएगा। पापा से संबंधित हम आज के गीत भी रखे हैं, और इसके अलावा हमारी जो गेस्ट हैं वो खास गेस्ट हैं, बहुत सारा सोशल काम कर रहे हैं, तो हम उनसे भी बातचीत करते जाएंगे और आपसे भी बातचीत करेंगे। आशा है कि आप हमारे कार्यक्रम में सहयोग देकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे।
5: अश्वता, एक बहुत सुंदर कविता है ओम व्यास की लिखी हुई, वो आपको सुनाएंगे पिताजी के बारे में।
0: तो इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज का विचार।
4: नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है आज का विचार। आज के विचार की प्रेरणा मैंने श्री कृष्ण के जीवन से ली है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन उलझ जाए तो उसे प्रेम, धैर्य और सही कर्म से साधो, यही जीवन का सच्चा योग है। श्री कृष्ण का पूरा जीवन एक संदेश देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन, मन को स्थिर रखकर सही निर्णय लेना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। उन्होंने युद्ध भूमि में भी अर्जुन को अहिंसा नहीं बल्कि धर्म के लिए आवश्यक कर्म का मार्ग दिखाया। उन्होंने गोकुल में प्रेम सिखाया, मथुरा में साहस, द्वारका में नेतृत्व और कुरुक्षेत्र में ज्ञान। कृष्ण कहते हैं कि जीवन का असली युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है। जो अपने भीतर के भय, क्रोध और भ्रम को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। धन्यवाद।

0: दर्पण रेडियो सुन रहे सभी श्रोतागण को प्यार भरी नमस्कार। क्या आप अपने प्रियजनों के लिए भरोसेमंद और स्नेहपूर्ण देखभाल की तलाश में हैं? श्री ओम केयर में हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान, गरिमा और घर जैसा माहौल देते हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैं इन होम केयर, डिसेबिलिटी केयर और डेमेंशिया व अल्जाइमर सपोर्ट, साथ ही स्पेशल सपोर्ट, एडवाइजरी सर्विसेज और संस्कृति व भाषा के अनुसार विशेष देखभाल। हम 24/7 असिस्टेड लिविंग, रजिस्टर्ड नर्सिंग, रेस्पाइट केयर और हेल्दी एजिंग एक्टिविटीज भी प्रदान करते हैं। हम माई एज केयर, NDIS और प्राइवेट केयर विकल्पों के माध्यम से आपकी पूर्ण सहायता करते हैं। श्री ओम केयर, जहां देखभाल परिवार जैसी लगती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 1300-908-681 या फिर वेबसाइट विजिट करें shriomk.org.au। धन्यवाद
1: दोस्तों, समय है अब हमारे जो गेस्ट हैं उनसे मिलवाने का। शैलजा जी, आप गेस्ट से मिलवाइए।
2: यस, सुब्बराव जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, किसी भी समुदाय के समुचित व संगठित विकास के लिए समाज के कुछ दिग्गज निस्वार्थ समाज सेवक सूत्रधार होते हैं।

0: जिनका योगदान सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है और ये आवश्यक भी है और आजकल और भी इसकी आवश्यकता बढ़ गई है जब हम विदेश में रहते हैं, विशेषकर विदेश प्रवास के पहले वर्ष में। तो हम आज आपको ऐसे ही प्रभावशाली दिग्गज सूत्रधार से परिचित करा रहे हैं जिन्होंने एक दशक पूर्व भारत ही नहीं अन्य देशों से आए प्रवासियों की अनेक चुनौतियों में हाथ बटाने का निश्चय किया था। श्रोताओं, मुझे आश्चर्य होता है कि वह आपको भी होगा कि इस क्षेत्र में सुब्बाजी वेरिगोंडा राव ने अपने अथक प्रयासों से विशेषज्ञ उपलब्ध किए हैं हर विषय में, हर क्षेत्र में। तो हम आपका परिचय आज आपका करा रहे हैं श्री सुब्बा राव वेरिगोंडा जी से, जिनकी जो पहुंच है वो इतनी विस्तृत है कि मुझे तो आश्चर्य हुआ कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है सिडनी में और पूरे न्यू साउथ वेल्स में जहां की उनकी पहुंच ना हो। तो सुब्बा राव जी, आप अपने विषय में कुछ बताएंगे कि आप कहाँ से आए हैं, कब से यहाँ पर हैं और किसने आपको इतना प्रेरित किया है इस समाज सेवा के लिए जिसमें आपने पूरे अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है।
1: डॉक्टर शैल चतुर्वेदी जी, जी मुझे बेहद बहुत खुशी है आज आपने हमें यहाँ इनवाइट किया दर्पण रेडियो कार्यक्रम में। सब श्रोताओं को सबसे पहले हमारे इंडियन सपोर्ट सेंटर की तरफ से नमस्कार एंड हैप्पी फादर्स डे टू एवरीबॉडी। मेरा जो सिडनी आना हुआ 1989 में हुआ है
0: जी।
1: उससे पहले काफ़ी साल इंडिया में हमने काम किया
0: जी।
1: 1971 से लेके एटॉमिक एनर्जी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, फिर MBA फ्रॉम IIM अहमदाबाद। ये करने के बाद
2: सुमराव जी थोड़ा सा माइक्रोफोन के पास आ जाएं।
1: 7 साल कंप्यूटर कंपनी में काम करे हमने, फिर मलेशिया सिंगापुर में 4-5 साल रह के ऑस्ट्रेलिया में 1989 में आए। तब से हमारा फंडामेंटल प्रोफेशन जो है वो है IT इंडस्ट्री में काम करते हैं
0: जी। हाँ,
1: समाज सेवा की बात जब हुई तो हमारी शुरुआत हुई थी 1992 में
0: जी।
1: एंड एट दैट टाइम जो शुरू में अलोंग विद माय वाइफ डॉक्टर सरयू राव वो हम लोग तेलुगु एसोसिएशन में काम करना शुरू करें
0: जी।
1: तेलुगु एसोसिएशन में काम करने के बाद 2 साल में पहला प्रेसिडेंट रहा वहाँ पर, फिर उसके बाद मौका मिला एक इंडियन अम्ब्रेला बॉडी शुरू करने का
0: जी।
1: वो हमने शुरू किया था मार्च 1994 में। पहले 2 साल आई वॉज द प्रेसिडेंट देर, फिर उसके बाद 10 साल आई वॉज अ पब्लिक ऑफिसर, फिर उसके बाद 4-5 साल थोड़ा आराम किया, फिर समाज ने कहा नहीं भैया आप आराम नहीं कर सकते हो, आप वापस आ जाओ कम्युनिटी में। सो एट दैट टाइम वी हैड टू क्रिएट काउंसिल ऑफ इंडियन ऑस्ट्रेलियंस 2010 में। वो 4-5 साल चलाने के बाद 2015 में हमें एक वेरी इंपॉर्टेंट चांस मिला। व्हेन आई वाज टॉकिंग टू मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट दे वांटेड टू रियली हेल्प द इंडियन कम्युनिटी, देन हमने कहा चलो ठीक है देखते हैं, सोच समझ के हमने कहा चलो ठीक है, वी वांट वन लोकेशन, एक जगह ऐसी हो जो कोई भी अपना भारतवासी जो हो, आई एम एन इंडियन आई नीड सपोर्ट, ये वन पॉइंट स्टॉप।
0: बिल्कुल,
1: तो विद दैट काइंड ऑफ थिंकिंग हमें प्रेरणा मिली, चलो शुरू तो करते हैं। ऐसा कोई सेंटर फिजिकल सेंटर था नहीं सिडनी में, तो था नहीं मेरे ख्याल,
0: बिल्कुल नहीं था,
1: हाँ जी। फिर हमने गवर्नमेंट का थोड़ा ग्रांट से ये हमने इसको शुरू किया मार्च 2015 में,
0: राइट।
1: तब से अभी 11 साल निकल गए।
0: और आपकी जितनी सेवाएं बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि आपने, मुझे लगता है कि पहले तो आपने एक बड़ा ही जो हेडिंग था माइग्रेंट सेटलमेंट, तो इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो इससे आपने शुरू किया था, तो उसमें आप क्या क्या इंक्लूड करते हैं माइग्रेंट सेटलमेंट में?
1: देखिए, सबसे पहले उस वक्त दिमाग में यह आया कि हम लोगों ने काफ़ी सारे जो प्रोग्राम्स हैं बॉलीवुड सेंटर्ड हैं, दिवाली हुआ, होली हुआ, कल्चरल प्रोग्राम्स, वो तो बहुत ज़रूरी हैं, वो तो चल रहे थे, काफ़ी लोग कर रहे थे,
0: बिल्कुल कर रहे हैं।
1: लेकिन डे टू डे ग्रास रूट लेवल सपोर्ट जिसको कहते हैं, उस पर जब इंसान यहाँ सिडनी आता है, ही डज नॉट नो कहाँ जाए, क्या करें, किससे बात करें
0: जी।
1: तो इसलिए जैसे ही लोग आते हैं, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आई थॉट शुड बी अ सेंटर, विच वी कॉल्ड इट फॉर्चुनेटली वी गॉट दैट नेम इंडियन सपोर्ट सेंटर. तो जब माइग्रेंट आते हैं उनको बेसिक थिंग्स कहाँ सेटल होना है, रियल एस्टेट कौन, रियल एस्टेट वाले कौन कौन है जो हेल्प कर सकते हैं, बच्चों का स्कूल्स कहाँ पर है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके लिए वो आते हैं तो हम उनको डायरेक्शंस देते हैं.
0: तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी कौंसल जनरल के थ्रू भी मिलती है, हाई कमिश्नर के थ्रू भी मिलती है?
1: जरूर मिलती हैं जी, लेकिन that they are all big bureaucratic government institutions. तो वहाँ पर भी मुश्किल हो जाता है, फोन करके देखिए कितना इंतजार करना पड़ता है. अल्टीमेटली मिल जाता है वहाँ से भी, लेकिन पर्सनलाइज्ड योर ओन लैंग्वेज बेस्ड अपने भाषा में बात करके उनको बिठा के चाय पे बात करके बताना.
0: तो सुबह जी मान लीजिए मैं आती हूँ आज एज ए इमिग्रेंट, में मेरा यहाँ कोई भी नहीं है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपकी सर्विसेज अवेलेबल हैं?
1: इट्स वेरी सिंपल. अभी इंडियंस काफी सारे, वी आर मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया, हम लोगों का एक ब्रांड इक्विटी हो गया है. तो आप सिर्फ गूगल में जाके इंडियन सपोर्ट डाल दीजिए
0: जी,
1: Indian support.
0: Right.
1: Our Indian support center will be first item in the line.
0: बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा है.
1: हाँ जी. तो करने से आपको सीधा मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा, फोन मिल जाएगा, फोन नंबर, मेरा फोन भी वहाँ पर लिखा हुआ है. तो वो लोग बात करने से स्टेडियम कहते हैं भाई अगर मुझे मिलना है तो एवरी सैटरडे आई एम देयर बिटवीन 3:30 to 6:30 और बाकी 5 दिन 9:30 to 5:30 वी गॉट, हम वहाँ पर एक सेंटर मैनेजर भी है और वहाँ पर काफ़ी सारे वॉलंटियर्स इंटर्न्स जो लोग हैं वो भी वहाँ पर आपको मिलेंगे. जाते ही आपको आपके साथ बातचीत करके आपको जानकारी देंगे.
2: अच्छा सुब्बा राव जी,
1: जी
2: ऐसा है कि हम थोड़ा सा, आप बहुत दिनों के बाद हमारे कार्यक्रम में आए हैं, तो हम थोड़ा सा और पीछे जाएंगे. आप बताइए भारत में आप कहाँ से हैं?
1: ओके, भारत में मेरा जन्म हुआ था ए प्लेस कॉल्ड गोलनापल्ली इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट विजयवाड़ा के पास.
2: अच्छा अच्छा अच्छा.
1: फिर व्हेन आई वाज 10 इयर्स ओल्ड फिर हम लोग, फादर आर्मी में थे तो हम लोग दिल्ली चले गए.
2: अच्छा.
1: दिल्ली में हमने पढ़ाई करी थी एक आंध्रा स्कूल करके तेलंग ब्रिज के पास, वहाँ पढ़ाई करके फिर आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. वहाँ करने के बाद फिर हम बम्बई चले गए टू वर्क विथ एटॉमिक एनर्जी.
2: अच्छा.
1: एंड दैट्स हाउ माई प्रोफेशन स्टार्टेड.
0: तो इसीलिए आपकी हिंदी इतनी अच्छी है.
2: हाँ, इतनी अच्छी है. आप सब जगह रहे हैं. तो ऐसा करते हैं शैलजा जी, हम थोड़ा सा इसमें आज का जो हमारा थीम है फादर्स डे वाला, उसका इन्वॉल्व करते हुए हम सुब्बा राव जी से पूछते हैं, आपको अपने पापा की कैसे याद है और एक कुछ छोटी सी घटना बताइए.
1: यू टच माई हार्ट. माई फादर, हम मेरे पापा जो हैं वो इंडियन आर्मी में थे. एंड इन वन ऑफ हिज पोस्टिंग्स इन 1959 उनका पोस्टिंग हुआ था दिल्ली में, तो इसलिए उस वक्त हम सब लोग गांव में जो थे हम सब लोग उनके साथ दिल्ली चले गए.
2: अच्छा.
1: एंड ही इज ए वेरी वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. आर्मी में ही सर्व्ड द आर्मी इन कश्मीर काफी साल, वहां पर कश्मीर उधमपुर जैसे जगह पे इन्होंने काम किया. फिर ही लव्ड हिज चिल्ड्रन सो मच. जैसे हम दिल्ली पहुंच गए एक हमारा एजुकेशन, एंड ही वाज सो पैशनेट अबाउट एवरी डे. घर में हम लोगों को उस जमाने में एक ग्रामर बुक होता था कॉल्ड रेनन मार्टिन, पता नहीं आप लोग शायद जानते होंगे. रेनन मार्टिन आगे से पीछे हर रोज 1 घंटे का ड्रिल.
2: कितने भाई बहन थे आप?
1: हम लोग 3 भाई हैं. मेरा एक बड़ा भाई है.
2: अच्छा.
1: इंडिया में, वो भी अभी आर्मी से रिटायर हो गए हैं. और एक मेरा छोटा भाई है, वो है अमेरिका सैन डिएगो में. हम बीच के हैं.
2: एक्चुअली आशिमा जी इससे रिलेट कर सकती हैं कि उनके पापा भी,
3: मेरे फादर भी इंडियन आर्मी में थे, AMC में, आर्मी मेडिकल कोर में.
0: तो आपका भी वही डिसिप्लिन था.
1: डिसिप्लिन बहुत सिखाया उन्होंने.
2: शैलजा जी, आपके पास एक सुंदर सी कविता थी, वो सुना दीजिए, फिर उसके बाद एक सुंदर सा गीत सुनाएंगे और अपने बातचीत आगे बढ़ाएंगे.
0: तो श्रोताओं, आपको फादर्स डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं और मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कविता सुनाऊंगी. मेरी लिखी हुई नहीं है लेकिन ये इन्होंने लिखी है, कवि ओम व्यास जी ने, लेकिन मुझको बहुत ही अच्छी लगी. पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है. पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है. पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है. छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान. आप सोचिए कि छोटे 4 साल का बच्चा है, अपने पिताजी को देखता है कि ये सबसे बड़ी मूर्ति है संसार में. पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है. पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है. पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है, अप्रदर्शित दिखाते नहीं है वो, लेकिन माँ तो दिखा देती हैं लेकिन पिता नहीं दिखा पाते हैं, पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार हैं, पिता तो बच्चों का इंतज़ार हैं, पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं, पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं।
1: क्या कहा?
0: पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं, पिता से परिवार में प्रतिपल राग है, पिता से परिवार में प्रतिपल राग है, पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है, पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है, पिता है रोटी कपड़ा मकान है, पिता छोटे से परिंदे का आसमान है।
2: बहुत सुंदर शैलजा जी, बहुत सुंदर। अब इसी के साथ साथ हम एक गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।

सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

0: Love authentic curries, but don't have hours to spend in the kitchen? Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian-made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters. Authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
1: Yeh tha hamara sponsor Curry Master ka sandesh.
2: अच्छा आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, जो इंडियन सपोर्ट सेंटर आप चला रहे हैं वो कैसे आप व्यवस्थित करते हैं, कैसे स्टाफ एम्प्लॉय करते हैं, क्या वॉलंटियर्स कैसे लाते हैं?
3: ये जो है पीपल सपोर्टिंग दिस ऑफ कोर्स इज ए बिग चैलेंज. तो हमें वहाँ पर क्या होता है, देयर आजकल जो इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी जो है वहाँ से काफ़ी लोग इंटर्नशिप यानी कि ट्रेनिंग यानी कि जॉब रेडी प्रोग्राम के लिए आते हैं
2: जी.
3: वो दे रिया उनके लिए हम लोग उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए ये हमारे एक्टिविटीज़ में उनको एक्टिव इन्वॉल्वमेंट देके काम कराते हैं. और दूसरी बात यह है कि देर लॉट ऑफ पीपल हु आर whose husbands are gainfully employed, उनके wives जो हैं they are highly educated, highly talented. और वो लोग जो हैं देखते हैं कुछ काम volunteership में मिल जाए या कुछ real job मिल जाए, paid job, तो वो लोग भी आके they knock at our doors. फिर हम लोग उनसे बैठ के बातचीत करके देखते हैं, कुछ लोग they are happy to be volunteering 2 hours, 4 hours, 6 hours और 2 days in a week and things like that. और कुछ लोग जो हैं इनको मिनिमम वेज पे हम रखते हैं. वी का हम लोग कॉरपोरेट लेवल पे वेजेस तो दे नहीं सकते हैं, बट मिनिमम वेज लेवल पर भी कुछ लोग जो एक्सेप्ट करते हैं जिनके पास टैलेंट है, हम उनको वहाँ पर रख के ये जो जितने प्रोग्राम्स यहाँ पर आज आपसे आपको लिख के दिया हमने उस पर हम लोग उनको यूज करते हैं. तो इट्स डिफिकल्ट टू गेट द राइट कैंडिडेट, बट फिर भी हम लोग कोशिश करके लोगों को एंगेज करके, खास करके मैं उनको काफ़ी समय बिता के ट्रेनिंग देता हूँ.
4: आपकी सुबह जी आपकी बहुत बड़ी संस्था है और मुझे लगता है कि इसमें कितने स्टाफ इन्वॉल्व होंगे, तो ऑल टुगेदर वॉलंटियर्स एंड पेड स्टाफ कितने लोग इन्वॉल्व हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में?
3: तकरीबन ऑल टुगेदर देयर विल बी 16 पीपल.
4: 16 ओनली?
3: 16 लोग, हाँ, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर वेंटवर्थविल में हमारा ऑफिस है इंडियन सपोर्ट सेंटर का, वहाँ पर हैं. बाकी सारा काम वॉलंटियर्स एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स हम खुद भी कर लेते हैं, थोड़ा डब्बों में, थोड़ा बाकी जो संस्थाएं जो हैं लिटिल इंडिया, NSW, हैरिस पार्क, और अभी जो नया जो हमने शुरू किया है मल्टी कल्चरल कम्युनिटी सपोर्ट सेंटर, वो अभी शुरू हो रहा है, वहाँ पर भी हमने अभी हायर किया हुआ है. तो 16 लोगों से काफ़ी काम चल जाता है. फिर भी हम लोग वी आर ऑन द लुकआउट फॉर मोर पीपल, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एरियाज लाइक NDIS.
4: राइट, तो 16 पीपल दे आर फुल टाइम?
3: हाँ,
4: आपका ऑफिस कहाँ है? एक तो मैंने पढ़ा था गिल्बा स्ट्रीट है और दूसरा वेंटवर्थविल है, फिर तीसरा आप कह रहे हैं कि हैरिस पार्क में भी है.
3: अच्छा, गिल्बा स्ट्रीट हमने वहाँ पर शुरुआत करी थी 2015 में, लेकिन 2018 में वी मूव टू वेंटवर्थविल 2 Lane Street पे.
4: तो वो तो कम्युनिटी सेंटर है.
3: हाँ, वो कम्युनिटी सेंटर में नाइसली छोटा सा 2 bedroom का वो है, उन लोगों ने काउंसिल वालों ने हमें दिया है ऑन ए पेड बेसिस ऑफ कोर्स. तो हम लोग वहाँ पर 2018 से ये संस्था.
4: तो कितना बड़ा है वो ऑफिस वहाँ का जो आपको मिला है उसमें?
3: बिग, इज अबाउट 70 square meters डिवाइडेड इनटू 3 नॉर्मल रूम्स एंड 1 small room, बट दैट इज गुड एनफ. बट वी डेफिनेटली नीड मच लार्जर स्पेस, लेकिन
4: yes.
3: हम गुजारा कर रहे हैं वहाँ पर. समटाइम्स ऑन अ नॉर्मल डेज आपको वहाँ पर अंदर जाने की जगह नहीं मिल सकती है व्हेन स्टूडेंट्स. फिर हमने थोड़ा सा एक्सपेंशन के उसमें एक नई जगह ली है, उदया के ऊपर एक जगह एक और ऑफिस लिया हुआ है, वहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट करके चला रहे हैं.
4: क्योंकि आपकी सर्विसेज के लिए काफ़ी बड़ी स्पेस होनी चाहिए.
3: हाँ जी.
4: तो उससे आपको गवर्नमेंट से कुछ हेल्प नहीं मिल सकती है या काउंसिल से?
3: government says it's very hard to get space or to get wages for people. Government grants program ke direction mein wo log generally program ko jo run karne ke liye they provide a bit of funding, but they don't provide funding for employing people, especially that has been our experience. तो कोशिश तो कर रहे हैं, देखते हैं अभी कुछ मिल जाता है तो
4: इंडियन गवर्नमेंट.
1: मैं पूछना था तो क्या आप कभी कैसे फंडिंग कैसे होती है, 16 लोगों को एम्प्लॉय करके आप करते हैं तो फंडिंग अगर कभी कभी अपनी पॉकेट से भी देना पड़ता है क्या?
3: देखिए ऐसा है, 16 लोग जो है उसमें काफ़ी सारे वॉलंटियर्स लोग हैं. अच्छा. हमारा अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पर डब्बो देन ब्लैक टाउन ऑफिस एंड लिटिल इंडिया NSW इन सब मिला के तकरीबन हमारा 12,000 का डॉलर का पर मंथ का एक्सपेंडिचर है. सो दैट्स अ फेयर बिट ऑफ मनी.
4: यस.
3: एंड तो हम लोग क्या करते हैं, नॉट एवरीथिंग गोज थ्रू गवर्नमेंट फंडिंग. हम लोग गवर्नमेंट के फंडिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्टेन प्रोग्राम बेस्ड काइंड ऑफ इवेंट्स. हाउएवर देयर आर लॉट ऑफ एरियाज वेयर we deliver programs through other organizations through whom we get a little bit of money. Like for example hamara pura digital education program jo hai for seniors, for women, the wo programs jo hai hamare ek sanstha hai called ek organization hai called Good Things Foundation, unke dwara wo hum program chalate hain. Fir similarly every weekend hum log पब्लिक नोटरी सर्विसेज चलाते हैं. 3:30 to 5:30 टू आवर्स पब्लिक नोटरी. देन वे हम लोग वहाँ पर थोड़ा मोस्ट फेयर बिट ऑफ मनी नोटरीज को ऑब्वियसली देना पड़ता है. बाकी जो है हमारे एडमिन एक्सपेंसेस के लिए थोड़ा वहाँ से पैसा.
1: कमाल है सुबहराव जी, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं. 12,000 पर मंथ आपका एक्सपेंसेस हैं और इसका मतलब ये होगा 144,000 पर एनम आप इतना रेज कर लेते हैं. आपका मतलब ये है कि हम तो एक्चुअली हमारे दर्पण रेडियो का जो स्पॉन्सरशिप है उसके चलाते हैं और हैंड टू माउथ ही रहते हैं, लेकिन यह है कि हमें शायद थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, तो आपका डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन हम आपको साधुवाद देते हैं कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं. अच्छा, आपने कई संस्थाओं के नाम लिए, एक बार फिर से 1, 2, 3, 4, 5 करके हमें बता दीजिए कौन कौन सी संस्थाएं आप चला रहे हैं.
3: अच्छा, जो 2015 से जो हमने शुरू करी थी इंडियन सपोर्ट सेंटर इनकॉर्पोरेटेड, एंड उसके वो 10 साल अभी 12वां साल चल रहा है अभी. देन दूसरी संस्था जो है 2023 में हमने रीजनल डब्बों में चले गए. वो इसलिए भी गए थे कि वी आर टॉकिंग टू मल्टी कल्चरल NSW. वन ऑफ देयर प्रायोरिटीज इज रीजनल सेटलमेंट.
1: अच्छा.
3: तो वो रीजनल सेटलमेंट के चक्कर में उन लोगों ने देखा वॉज अ बिट ऑफ ए ग्रांट विच वॉज एनफ टू ट्रेन पीपल एंड मेक देम जॉब रेडी. फिर उसके बाद हम उनको डब्बो भेज सकते हैं बिकॉज डब्बो इज ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट. तो इस सिलसिले में हमने वहाँ जाके एक ऑफिस खोला हुआ है वहाँ पर, एंड वो चल रहा है अभी. वी गॉट आवर ओन फंडामेंटल इश्यूज ऑफ गेटिंग राइट पीपल एंड ऑल दैट. दैट इज सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, तीसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, कई बार क्या होता है कि व्हेन यू गॉट दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस पीपल कम टू यू फॉर सपोर्ट. तो इस सिलसिले में हैरिस पार्क में लिटिल इंडिया NSW करके, दैट इज रन बाय द प्रेसिडेंट इज नितिन सेठिया. तो वहाँ पर आई एम द पब्लिक ऑफिसर देयर. तो उन लोगों को हेल्प करते करते अभी एन एक्सेलेंट प्रोग्राम वी स्टार्टेड कॉल्ड फ्री शटल सर्विस.
4: राइट.
3: एंड ए फ्री शटल सर्विस जो है विथ पार्ट ऑफ इट इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट, पार्ट ऑफ इट थ्रू स्पॉन्सरशिप्स फ्रॉम बिजनेसेस इन हैरिस पार्क. वी थैंक ऑल ऑफ देम. सो हम लोग दैट फ्री शटल विल टेक पीपल फ्रॉम पैरामेटा स्टेशन इन टू विक्रम स्ट्रीट, मेरियन स्ट्रीट एंड स्टेशन स्ट्रीट्स ऑफ हैरिस पार्क.
1: बहुत बढ़िया.
3: इमेजिन आप शॉपिंग करने जाते हैं, इधर वहाँ जाते हैं, राधे जाते हैं या पटेल ब्रदर्स जाते हैं, 5 किलो राइस 5 किलो आटा लेके कितनी दूर पैदल चल पाओगे अपने गाड़ी तक. तो उनके लिए ये बहुत ही व्हाट यू कॉल कन्वीनियंस है. तो अभी ये शुरू करके 2 हफ्ते हुए हैं एंड NSW गवर्नमेंट को भी हम हार्दिक सब थैंक्स कहते हैं. और तो मेरे ख्याल वो प्रोग्राम अच्छा जा रहा है. और उसके अलावा अभी पूरा साल हम लोग एक और मेजर प्रोग्राम थ्रू सपोर्ट फ्रॉम पैरामीटर काउंसिल नाइट टाइम इकोनॉमी प्रोग्राम्स करने वाले हैं. एवरी मंथ 3-4 रेस्टोरेंट्स को लेके उनको खूब प्रमोट करके थोड़ा वहाँ पर बॉलीवुड सिंगिंग डांस ये प्रोग्राम्स क्रिएट कर रहे हैं हम लोग अभी. दैट इज़ थर्ड आइटम. द फोर्थ वन, देखिए व्हेन यू रन इंडियन सपोर्ट सेंटर परसेप्शंस sometimes can be a bit problematic.
4: Yes.
3: The general public out there tend to think ye Indian support center khas karke Indians ke liye hi hai. To usse baki log kafi log nahi aate hain. And also when you approach the government they say, oh, Indians may not require support.
4: Yes.
3: Indians are well to do, hard working, intelligent people. Aap logon ko zyada government ki madad nahi chahiye. To isliye to circumvent that and try to deliver the services to wider cross section, hum logon ne we now started multicultural communities.
4: Yes.
3: Multicultural community support center in Blacktown. Chahe koi bhi migrant, South America, South Africa, Middle East, South Asian countries, ASEAN countries, jahan se bhi jo bhi aaye hain, wo wahan par aake madad le sakte hain. Khaas karke us program mein hum log, we are just conceptualizing employment pathway as the major program.
4: Yes.
3: Doesn't matter whether you are from India or anywhere in the world, where there are a lot of colleges where students pass out but they don't get jobs. So hum log is waqt employment pathway ke roop mein unko laake train karke industry ke sath baat karke unko placement karne ka massive program we have undertaken at multicultural community support center. So these are the four institutions where my time goes.
1: बहुत बढ़िया साहब, बहुत अच्छा. तो इसी के साथ साथ हम एक गीत सुनाते हैं
3: जी.
1: फिर उसके बाद आपने इतनी अच्छी बात बताई, इतने लोगों को आप सिखाते हैं. तो कल टीचर्स डे था, उसके बारे में गीत के बाद हम वो वार्ता सुनेंगे, फिर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे.
4: शिक्षक दिवस,
1: शिक्षक दिवस.

0: भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है?
1: बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au।
2: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश।
3: सरिता सोनी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिश्ते की जो हमारे जीवन को दिशा देता है, गुरु और शिष्य का रिश्ता। आप सभी ने दोहा सुना होगा, संत कबीर दास जी का है, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। श्रोताओं, 5 सितंबर हमारे लिए बहुत खास दिन होता है, क्योंकि इस दिन हम भारत के महान शिक्षक, दार्शनिक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हैं। उनके जन्म दिवस को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबों का ज्ञान देना या परीक्षा पास करवाना नहीं है। शिक्षा का असली उद्देश्य है एक अच्छे इंसान का निर्माण करना। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा केवल पढ़ाता नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को जीवन की सही दिशा भी दिखाता है। अगर हम भारत की बात करें तो गुरु शिष्य परंपरा हमारे देश की बहुत पुरानी और सुंदर परंपरा है। आज समय बदल गया है। आज गुरुकुल की जगह स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और ऑनलाइन शिक्षा ने ले ली। हमारे पास किताबों के साथ साथ इंटरनेट और टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली है और वो है हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत जो हमेशा रहती है। हम सभी को जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमें बताए कि सही रास्ता क्या है, हमारी गलतियों को समझाए, मुश्किल समय में हमारा हौसला भी बढ़ाए और हमें खुद का बेहतर रूप बनने के लिए प्रेरित करे। और अगर हम अपने जीवन को ध्यान से देखें तो हमारे पहले गुरु हमारे माता पिता और हमारा परिवार होता है। हमारे माता पिता हमें केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने जीवन और अपने व्यवहार से सिखाते हैं। इसलिए मैं मानती हूँ कि माता पिता हमारे लाइफ लॉन्ग टीचर्स होते हैं। एक शिक्षक हमें विषय का ज्ञान दे सकता है, लेकिन एक अच्छा शिक्षक हमें जीवन को समझना भी सिखाता है। और यही भावना ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलती है। यहाँ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स डे 3 सितंबर को मनाया जाता है, जिसके माध्यम से सभी एजुकेटर्स को सम्मान दिया जाता है, जो छोटे बच्चों की लर्निंग, डेवलपमेंट और वेलबींग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक एजुकेटर बच्चे को केवल लेटर्स या एक्टिविटी से ही सिखाता, वह बच्चे में कॉन्फिडेंस, क्यूरियोसिटी, काइंडनेस और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने में भी मदद करता है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी, हम सभी किसी ना किसी के शिष्य हैं और शायद हम सभी किसी ना किसी के गुरु भी हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सत नमन और सभी शिक्षकों एवं एजुकेटर्स को मेरा दिल से धन्यवाद। हैप्पी टीचर्स डे और हैप्पी एजुकेटर्स डे। और इन शब्दों के साथ ही मुझे दीजिए अनुमति, आप सभी का दिन शुभ हो। सुनते रहिए रेडियो दर्पण। धन्यवाद श्रोताओं।
4: सरिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सुंदर वार्ता प्रस्तुत की है।
2: बहुत अच्छी बात है और हमारी बातचीत आगे बढ़ रही है। तो आशिमा जी, आप कुछ पूछने वाली थी।
5: हाँ शुभा जी, आप बताते शटल सर्विसेज के बारे में, पैरामीटर टू हैरिस पार्क, तो उसमें कैसे कैसे मतलब टाइमिंग्स बताइए, जैसे सब श्रोताओं को मालूम पड़े और आपकी शटल सर्विसेज यूज़ कर पाए।
6: अच्छा जी, सबसे पहले ये मैं कहूँगा कि हैरिस पार्क का मेन प्रॉब्लम है पार्किंग। मान लो आप इवनिंग जाना चाहते हैं फैमिली के साथ फाइन डाइनिंग के लिए कहीं कोई भी रेस्टोरेंट में, वहाँ पर पार्किंग नहीं मिलता है। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं चलो घर जाते हैं वापस या कहीं और जाते हैं, तो इसलिए पीक टाइम जो है अब वीक का थर्सडे टू संडे होता है। तो हम लोगों ने बजट्स को ध्यान में रखते हुए थर्सडे टू संडे 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक ये शटल सर्विस जो है पेरमेटा स्टेशन से टू वेरियस स्ट्रीट्स जो है हैरिस पार्क के, वो शटल सर्विस चलता रहता है। तो ये हमने शुरू करी थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि रफली तकरीबन 25 मिनट से 30 मिनट्स का सर्विस टाइम है जहाँ भी आप लेते हैं ना बस को, तो 30 मिनट्स के बाद वहाँ पर वापस आ जाएगा।
4: तो इसका मतलब कि हर 25 से 30 मिनट में आपको गाड़ी मिलेगी वहाँ से।
6: हाँ, इस वक्त।
4: और दिन में नहीं मिलेगी 6 बजे से पहले?
6: दिन में हम लोगों ने अभी बजट के वजह से हमने डे टाइम हमने शुरू नहीं करी। वी आर फाइंडिंग थोड़ा सा बजट अगर मिल जाए तो हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, बट इस वक्त इट्स अ रिस्ट्रिक्शन टू रन ओनली फॉर थर्सडे टू संडे।
2: अच्छा, हो सके तो स्टॉप्स के बारे में बता दीजिए कहाँ पर
6: है। जी, इट्स पहले तो शुरू तो 10 वैलेंटाइन स्ट्रीट स्टेशन के बिल्कुल बगल में है, वहाँ पर पिकअप करेंगे। वहाँ पर पिकअप करके पार्क स्ट्रीट से लेके हैसल स्ट्रीट पे एक कार पार्क है, उसका नाम है इंटर पार्क कार पार्क। वहाँ पर भी लोग पार्क करते हैं वीकेंड्स में, तो सिर्फ आई थिंक दे चार्ज ओनली $4। तो वहाँ पर कार पार्क करने के बाद फिर वहाँ से लोगों को हम पिकअप करके विक्रम स्ट्रीट जहाँ मलबार गोल्ड डायमंड शॉप है वहाँ पर एक स्टॉप है, फिर सीधा विक्रम स्ट्रीट पे जाते जाते समवेयर नियर 88 आई थिंक विक्रम स्ट्रीट वहाँ पर एक स्टॉप होगा। फिर उसके बाद मेरियन स्ट्रीट है, वहाँ पर लेफ्ट लेके हम लोग जो पटेल ब्रदर्स है वहाँ पर डेफिनेटली एक स्टॉप है, एंड फिर वहाँ घूम के वापस मेरियन स्ट्रीट से जाके हम लोग राधे पे जाके वहाँ पर एक और स्टॉप है, वहाँ पर रोक।
2: बहुत बढ़िया।
6: हाँ, वहाँ रोक के फिर बाद में सीधा वहाँ से जाके पार्क स्ट्रीट फिर बैक टू द रेलवे स्टेशन।
2: अच्छा, तो ये एक पहले तो ये बताइए कि $4 वाला जो पार्किंग है वो कहाँ पर है?
6: वो तो हैसल स्ट्रीट और विक्रम स्ट्रीट का क्रॉसिंग है।
2: अच्छा,
6: टी जंक्शन। अच्छा, छोटा सा राउंड अबाउट है।
2: अच्छा,
6: बिल्कुल वहीं पर।
2: अच्छा,
6: इट्स बिगिनिंग ऑफ हैरिस, बिगिनिंग ऑफ विक्रम स्ट्रीट।
2: अच्छा,
6: हाँ,
2: अच्छा अच्छा,
6: वो हैसल स्ट्रीट के बिल्कुल इंटरसेक्शन पे।
2: अच्छा,
4: दिस इज द फ्री सर्विस।
6: दिस इज बाय नेम इटसेल्फ वी आर सेइंग इज अ फ्री शटल, नोबडी हैज टू पे एनीथिंग। एंड हाँ जी,
2: तो इसे सर्च करने के लिए क्या कर रहे हैं इंटरनेट पर?
6: हाँ, आप लिटिल इंडिया NSW फ्री शटल करके देख लीजिए, अगर आता है तो हम लोग वी आर डूइंग लॉट ऑफ प्रमोशन इन फेसबुक, बट फ्री शटल हैरिस पार्क डालने से आपको काफ़ी जानकारी मिलना चाहिए।
2: बहुत बढ़िया साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, इतना कर रहे हैं मतलब गजब की बात है, आप कमाल है।
6: थैंक यू।
4: लिटिल इंडिया में और आपके क्या प्लान्स हैं उसको डेवलप करने के लिए?
6: देखिए, काउंसिल के साथ काफ़ी बातें होती रहती हैं, उनसे बात कर रहे हैं, और डॉक्टर एंड्रू चार्ल्टन जी जो है फेडरल MP, उनसे भी काफ़ी बातें चल रही हैं कि, एंड ऑल्सो वहाँ का लोकल MP जो है डोना डेविस जी, तो वो भी हमें काफ़ी सपोर्ट करती हैं। तो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे हैं जो काउंसिल विद फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट, वो लोग उनके प्लान में है काफ़ी करने का, लेकिन हम लोग जो कर सकते हैं स्ट्रीट लेवल एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। अभी पूरा साल हम लोग मेरे ख्याल 6 to 8 weeks हम लोग एक नाइट इकोनॉमी प्रोग्राम कर रहे हैं।
4: अच्छा,
6: काउंसिल इज सपोर्टिंग अस इन दैट। नाइट इकोनॉमी में ये होगा कि विल पिक अप दिस मंथ 4-5 रेस्टोरेंट्स को लेके उनको खूब प्रमोट करके एक बॉलीवुड एंड डांस ग्रुप एंड सिंगर वो रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट उनको ले जाके, एंड वी वॉन्ट टू अट्रैक्ट लॉट मोर विजिटर्स टू हैरिस पार्क। एट द एंड ऑफ द डे वी वॉन्ट मोर फुटफॉल इन टू हैरिस पार्क। ये पूरा साल ये चलेगा। फिर उसके बाद जो है एक और विथ मल्टी कल्चरल NSW से छोटा सा स्ट्रीट फेस्टिवल का भी कुछ प्रोग्राम होगा। इसके अलावा भी देर आर अदर थिंग्स लाइक वी हैव जस्ट विथ अ स्मॉल ग्रांट we are doing digital education for seniors. तो काफ़ी सारे इंडियंस जो है सीनियर्स वहाँ पर आते रहते हैं, स्पेशली आप वीकेंड जाओ तो आगे जाके एक पार्क भी है वहाँ पर, वहाँ पर भी तो हनुमान 40 सुंदरकांड वगैरह बहुत होता रहता है वहाँ पर, तो उन सबको बुला के थोड़ा कंप्यूटर्स का सिखा के, स्कैम्स के बारे में बता के, थोड़ा एआई फॉर डे टू डे लाइफ वो थोड़ा बता के, ये सारे चीज़ों में हम उनको जानकारी देने का प्लान है, और इसके लिए थोड़ा छोटा ग्रांट भी अप्रूव हो चुका है, वो हम करने वाले हैं। हम लोग वहाँ पर हैरिस पार्क कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर है, उनसे बात करके वहाँ करने जा रहे हैं।
2: अच्छा, आपने एआई का नाम लिया तो मेरे जहन में एक सवाल आया।
6: जी जी,
2: कि आपकी एआई कंपनी है,
6: आईटी
2: कंपनी।
6: जी जी जी,
2: आईटी कंपनी पर एआई का क्या प्रभाव पड़ रहा है आपकी कंपनी पर?
6: देखिए, हमारे लिए तो मैं सोचता हूँ बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो काम मैं पहले 5 घंटे 6 घंटे में लेता था करने के लिए, अभी 15 मिनट आधा घंटे मेरा काम हो जाता है। पहले आई नीड टू डिपेंड ऑन सम अदर पर्सन, वो कब आएगा क्या करेगा उस पर डिपेंड करता था। अभी मैं सीधा आई यूज़ ओपन चैट GPT, इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज़ एनी AI टूल, वो यूज़ करके मैं सीधा सीधा जो मैं करना चाहता हूँ, कोई टेंडर सबमिशन हो, किसी को चिट्ठी लिखना हो, पूरा ड्राफ्ट भी पूरा बुलेट पॉइंट्स, 4-5 बुलेट पॉइंट डाल देता हूँ, इतना अच्छी तरह से मेरे को वहाँ ड्राफ्ट मिल जाता है, फिर उसको मैं मॉडिफाई करके आगे ले जाता हूँ।
2: अच्छा, ये बताइए कि आपके इसके पहले 3-4 साल पहले कितने एम्प्लॉय थे और अब कितने हो गए? आपने कुछ को निकाला क्या?
6: इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, देयर आर टू थिंग्स एम्प्लॉयज़ को रखना, एक तो ये है कि बिजनेस अच्छा काफ़ी जाना चाहिए आगे, तो फिर एम्प्लॉयज़ को भी रख सकते हो, लेकिन इट्स वेरी इजी टू से 1 in 3 or 1 in 4 रिडक्शन जरूर होगा, जरूर हो जाएगा, हो गया होगा ऑलरेडी। तो इसलिए मैं समझता हूँ पीपल हैव टू रीट्रेन देमसेल्व्स इन AI, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ AI, एंड अनलेस यू डू दैट, आई एम फीलिंग क्वाइट ए नंबर ऑफ पीपल विल बी आउट ऑफ देयर मेन जॉब्स।
2: ऑलरेडी काफी निकल
6: रहे हैं, चल रहा है अभी। आप इंटरनेट में जाके देखिए, यस, लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज हैपनिंग। एंड अभी एक और, अभी मान लीजिए क्लाउड को देखिए, क्लाउड AI सॉफ्टवेयर, तो सीधा सीधा कोड जो है, आप और हम भी बैठ के, थोड़ा जानकारी हो आप और हम भी बैठ के कोड लिख सकते हैं।
2: बिल्कुल।
6: तो इतना आसान हो गया है उससे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो भी AI आपको बना के देगा, अल्टीमेटली ह्यूमन ब्रेन हैज टू वेट इट, ह्यूमन ब्रेन हैज टू वेट इट, एंड देन यू कैन टेक इट फॉर इम्प्लीमेंटेशन। आंख बंद करके नहीं चला सकते AI को।
2: बिल्कुल।
6: तो अनफॉर्चुनेटली दिस व्हाट इज हैपनिंग, एंड आई होप द इंडस्ट्री विल सेटल विद other new opportunities in the marketplace.
2: Other new opportunities तो आएंगे ही, क्योंकि AI का इतना broad scope है, तो लोगों की अगर creativity है आदमी में, तो one can do a lot.
6: At the end of the day, IT industry आप देखोगे तो आपको सबसे पहले people meeting and people skills are number one.
4: Yes.
6: उनसे बात करके उनके business के लिए क्या क्या करना है, is also to understand is very very important.
4: Of course.
6: वो communication जब तक अच्छी तरह से establish नहीं होता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, because we are all in the business of communication.
4: Right.
2: बिल्कुल. तो इसी के साथ साथ, हाँ, शैलजा जी आप बोले.
4: That should be between person and person, not between AI and me.
6: Yeah. Absolutely जी. ठीक है.
2: अच्छा, तो ये है कि हम जय कृष्ण बोलते हुए याद करते हैं कि कल जन्माष्टमी भी थी, और परसों थी, 4 तारीख
4: परसों भी थी, कल भी थी, एक होती है गृहस्थों की, एक होती है संतों की।
2: अच्छा अच्छा,
4: तो गृहस्थों की जो थी वो तो परसों थी, कल थी संतों वाली।
2: तो कृष्ण जी का नाम लेते हुए हम एक वार्ता जन्माष्टमी की भी सुन लेते हैं, रंजना जी ने भेजी है।
7: श्रोताओं, जैसा हम सब जानते हैं, 4 सितंबर 2026 यानी शुक्रवार को भारत में और दुनिया के कई देशों में सारे भारतीयों ने और विदेशियों ने भी कृष्ण जन्माष्टमी मनाया। मैं रंजना रमन आपके साथ कृष्ण जन्माष्टमी की एक छोटी सी वार्ता में चलूंगी, और इस वार्ता में हम देखेंगे कि कैसे कृष्ण का जीवन एक प्रेरणा है और कैसे वो प्रेरणा हमारे लिए आज और अधिक संगत है, आत्मसंगत है, और हमें उसे क्यों सुनना चाहिए। वो रात जब आशा जन्मी थी। जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह वो क्षण है जब अहंकार के बीच प्रकाश ने जन्म लिया। जब अन्याय बढ़ा, जब भय ने लोगों के दिलों को जकड़ लिया, तब एक दिव्य बालक ने दुनिया को यह संदेश दिया, धर्म कभी हारता नहीं, बस उसके लिए सही समय का इंतजार करना पड़ता है। कृष्ण का जन्म हर कठिन समय के बाद एक नई शुरुआत होती है। कृष्ण का जन्म चमत्कारों से भरी एक रात थी। मथुरा की जेल में कंस के आतंक के बीच देवकी और वसुदेव ने उस दिव्य शिशु को जन्म दिया। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में चले गए और यमुना ने रास्ता बना दिया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक संकेत है कि जब उद्देश्य पवित्र हो तो प्रकृति भी मार्ग बना देती है। कृष्ण का जीवन प्रेम, साहस और कर्म का संदेश देता है। कृष्ण ने बचपन में गोकुल को हंसी और संगीत दिया, युवावस्था में मथुरा को साहस और द्वारका को नेतृत्व। उनका हर कदम हमें तीन बातें सिखाता है। प्रेम से बड़ा कोई बल नहीं, साहस वही है जो सही के लिए खड़ा हो, कर्म ही जीवन का असली धर्म है। कृष्ण ने कभी परिस्थितियों से हार नहीं मानी, उन्होंने उन्हें बदल दिया। आज की दुनिया में जन्माष्टमी का एक अलग महत्व है। आज हम तनाव, प्रतिस्पर्धा, असुरक्षा और अनिश्चितता से भरी दुनिया में जी रहे हैं। कृष्ण का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। मन को शांत रखो, निर्णय भावनाओं से नहीं विवेक से लो, सही कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो, प्रयास को श्रेष्ठ बनाओ, अहंकार छोड़ो, रिश्तों में विनम्रता ही स्थायी शक्ति है, धर्म का साथ दो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, सही रास्ता कभी गलत नहीं होता। कृष्ण कहते हैं कि जीवन का असली युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है। जो अपने भीतर के भय, क्रोध और भ्रम को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। और इस पर हमने आज के विचार में भी बात की थी। जन्माष्टमी का उत्सव भक्ति और आनंद का उत्सव। उस दिन घर घर में झूला सजता है, मक्खन मिश्री चढ़ती है और भजन गूंजते हैं। कान्हा की बाल लीलाएं हमें याद दिलाती है कि जीवन को हल्के फुल्केपन, हंसी और प्रेम से भी जिया जा सकता है। दही हांडी की परंपरा हमें सिखाती है कि ऊंचाइयां अकेले नहीं मिलकर हासिल होती है। कृष्ण का संदेश जो हम सब के लिए है, जन्माष्टमी हमें प्रेरणा देती है कि हर अहंकार, हर अंधकार में एक प्रकाश छिपा है, हर चुनौती में एक अवसर और हर मनुष्य में एक कृष्ण जो सही समय पर जागता है। कृष्ण का जन्म सिर्फ एक उत्सव नहीं, आत्म जागरण है। यह याद दिलाता है कि हम भी अपने जीवन में धर्म, प्रेम और कर्म का प्रकाश फैला सकते हैं। जय श्री कृष्ण।
8: Love authentic curries, but don't have hours to spend in the kitchen? Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian-made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters, authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
2: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो सुब्बा राव जी, ऐसा है कि आप इतना सारा काम करते हैं, और आप इतना सारा काम क्यों करते हैं?
4: ये राज आज आप खोलिए कि हम लोगों को कुछ मिले प्रेरणा।
2: बिल्कुल,
6: देखिए, इट इज अगर कहेंगे तो सेल्फ ड्रिवन है मेरे को। इफ आई डोंट हैव वर्क ऑन माय हैंड, दिमाग थोड़ा पागल जैसा हो जाता है।
2: बिल्कुल,
6: सबसे पहले
4: आप पागल मत होइए।
2: नहीं, आप कर सकते हैं। ये और करेंगे।
6: एंगेज ब्रेन को एंगेज करना अच्छे कामों के लिए बहुत ही जरूरी है। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज बिटवीन मी एंड माय वाइफ डॉक्टर सरयू राव जी जो है, तो इन हम दोनों के बीच में वी रियली हैव कम्युनिटी एट हार्ट। इन फैक्ट इन लॉट ऑफ इंस्टेंसेस माय वाइफ इज मोर towards community.
4: Yes.
6: And I have a strong focus. Whatever I do, commercially it has to be viable. Halanki a not-for-profit hai, halanki ACNC registered hai, DGR endorsed hain. Any donations more than $2 is tax deductible. But hum logon ne actively usme gaye nahi hain. Lekin main focus karta hoon har jagah pe. Financially, can I make it viable? And of course, aajkal kya ho raha hai? काम काफ़ी ज़्यादा हो गया है और मेरे आईटी कंपनी के काम में भी काफ़ी वो सम सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्टीज आई डू फेस समटाइम्स ऑन प्रायोरिटीज, क्योंकि कई बार वहाँ पर मेरे को टेंडर के लिए काम करना पड़ता है और यहाँ पर भी एक ग्रांट एप्लीकेशन डालना पड़ता है और रात को 10 11 12 बज ही जाते हैं मेरे को. फिर भी हम वी हैव पीपल स्पेशली इंडिया में भी एक दो लोग हैं जो हमारे अकाउंटिंग के काम करते हैं, ग्रांट राइटिंग का काम करते हैं, उनको हम ट्रेन करके काम दिया हुआ है. जब तक ये चल रहा है, मैं माइंड को एक्टिव रख के कर सकते हैं तो मैं करना चाहता हूँ, और प्रॉबली एट सम टाइम एक्टिव रख के कर सकते हैं तो मैं करना चाहता हूँ और प्रॉबली एट सम टाइम इन द फ्यूचर लाइक लॉट ऑफ अस वॉन्ट टू डू

0: क्या है, आदमी का दिमाग खराब होने के चांसेस
1: बिल्कुल
0: ज्यादा होते हैं।
1: बिल्कुल
0: आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि दिमाग को सही रखने के लिए जरूरी है कि आप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करिए, कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करिए। और तो मैं कुछ कह नहीं सकता, हमारे साइकाइट्रिस्ट बैठी हुई हैं शैलजा जी, आप
1: बिल्कुल
0: बताइए।
2: ये कुछ लोग होते हैं चैलेंजेस आर एनर्जाइजिंग फॉर देम, एंड आई थिंक आप उसका जीता जागता उदाहरण है कि चैलेंजेस जितने आते हैं उतने ही आपको एनर्जी लगती है, उतने ही आपको इंस्पिरेशन मिलता है।
1: मुझे अच्छा लगता है चैलेंजेस आने से।
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे ही लोग अगर हमारे समुदाय में हो तो फिर क्या कहना है।
0: अच्छा शैलजा जी,
1: हालांकि
0: हाँ,
1: एक छोटी सी मैं बताना चाहता हूँ, जैसा लोनली फील करते हैं आप बोल रहे हैं, यहाँ की समस्याएं कुछ कंप्लीटली अलग होती हैं। टू डेज पहले, दो दिन पहले, वन लेडी, उनका फोन आया मुझे, एंड उनका वट एवर इट इज हस्बैंड उनके साथ नहीं रहते, उनका एक बच्चा प्रीमेच्योर बॉर्न था,
0: अच्छा,
1: एंड 8 महीने पे बॉर्न हुआ, फिर उसके बाद अभी 3 महीने 4 महीने हो गए, तो शी इज इन एंड आउट ऑफ द हॉस्पिटल विद द किड। अब वो कहती हैं कि मेरा बेटी जो है उसका ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम काफ़ी सुना रही थी, फिर बोल रही थी मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो लाइक हु ट्रीट मी लाइक हीज और हर सिस्टर, हु ट्रीट मी लाइक देयर डॉटर, जिनके साथ मैं हफ्ते में 2-3 घंटा टाइम बिता सकूँ।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो ये सुन के मुझे यू नो आंसू आ गए फोन पे। फिर मैंने कहा चलो लेट मी वेट टिल माय वाइफ कम्स बैक टुमारो, उनसे बात करके, वी नीड टू प्रोवाइड ए बिट ऑफ ए फोरम फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल टू हैव दैट सोशल लोनलीनेस, अगर हम उसको एड्रेस कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
0: इसमें हमको भी रिक्रूट कर लीजिए कि अगर आपको इस तरह की जरूरत हो तो हमें बताइए, हम उसमें सहयोग देने की पूरी कोशिश करेंगे।
2: इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक बहुत ही बड़ा सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप फैमिली सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं, कि हमारी इंडियन कम्युनिटीज़ में डोमेस्टिक वायलेंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल पर्सनल इशू है और ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है, तो अब आप बताइए कि किस तरह से आप टैकल करते हैं।
1: ओके, सबसे पहले कोई भी जिस इंसान को प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम, जनरली वो कम्युनिटी में आके बताना नहीं चाहते
2: नहीं,
1: लोगों को
2: बिल्कुल,
1: बिल्कुल नहीं, वांट टू कीप इट कॉन्फिडेंशियल। तो जब वो लोग आते हैं उनको 1-to-1 बैठ के बात करते हैं, इधर आई एंगेज देम इन डिस्कशन, और जनरली ए फीमेल टच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा माय वाइफ हु इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बाय हरसेल्फ, और हमारे सेंटर मैनेजर, ये लोग उनसे बैठ के एक इनटेक नोट्स बनाते हैं। इनटेक नोट्स बनाते हैं उससे थोड़ा सा जस्ट लाइक डेवलपिंग ए बिट ऑफ ए हॉरोस्कोप ऑफ द प्रॉब्लम्स, जब से हमें पता लग जाता है प्रॉब्लम है, देन वी नीड टू वर्क ऑन डिफरेंट वेज ऑफ एड्रेसिंग दोज इश्यूज, एंड देर आर सम केसेस वेयर वी गॉट ए पैनल ऑफ मीडिएटर्स, फैमिली मीडिएटर्स, उनके पास डायरेक्शन दे के भेजते हैं। इन सम केसेस अगर बहुत सारे एडवांस हो गया प्रॉब्लम, इट कुड बी पुलिस काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट विल बी देयर, देन बिफोर दैट देर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ यू मे रिक्वायर साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाट्रिस्ट टू प्रिपेयर सम सॉर्ट ऑफ ए रिपोर्ट ऑन देम। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज, अभी समाज में आदमी हो या औरत हो डजंट मैटर, दे यूज वीसास एज ए वेपन।
2: यस,
1: वीसा को,
2: वीसा बहुत बड़ी चीज है,
1: मैं तेरे को इंडिया भेज दूंगी आज रात तक,
2: बिल्कुल,
1: जैसा पूरा देश उस औरत के कंट्रोल में है, आदमी का भी ऐसा ही हाल है, मैं तेरे को आज रात को भेज दूंगा इंडिया। नाउ ऐसे ऐसे थ्रेटनिंग जो होता है, ये थ्रेटन से दूसरा पार्टनर जो है उनका मानसिक जो सिचुएशन जो है बहुत ही खराब हो जाता है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस पे यू नीड ए गुड इमिग्रेशन एजेंट, ओके, यू नीड ए साइकोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट सपोर्ट, देन यू नीड ए समटाइम्स लॉट ऑफ टाइम्स इट्स ओके फाइनेंशियली दे मैनेज, बट समटाइम्स देयर कुड बी बिट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट रिक्वायर्ड। ये पूरा करके उनको प्रॉपर वीसा का प्रोसेसिंग करा के, जो भी पीआर वगैरह हो जाता है अच्छा है, उनको रीसेटल कराना इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सम केसेस टेक almost 1.5 to 2 years by the time they get their प्रॉपर वीसा, तो ये सब वहाँ पर चलता रहता है एंड वी मेंटेन नोट्स इन अवर सीआरएम सिस्टम्स कीपिंग इट हाईली कॉन्फिडेंशियल. बिल्कुल.
2: इंडियन गवर्नमेंट का एक प्लान था कुछ सालों पहले, उन्होंने

0: किया था कि डोमेस्टिक वायलेंस के या इमिग्रेशन से रिलेटेड जितने भी इस तरह के होते हैं, जो लोग वहाँ से शादियाँ करके लाते हैं, ये उन सब में उनको सपोर्ट करने के लिए दे हैड अ प्रोविजन ऑफ सम फाइनेंशियल एड.
1: हाँ,
0: व्हाट इज दैट?
1: वो है उनका, मेरे ख्याल उनका जी एक पैनल ऑफ सोलिसिटर्स है.
0: Yes.
1: दो तीन चार पांच पता नहीं कितने हैं उनके पास. सो इफ यू नीड लीगल सपोर्ट दे डू प्रोवाइड इट थ्रू दोज पीपल. इतना तो जरूर करते हैं
0: जी.
1: लेकिन मुझे ये नहीं पता इफ दे गिव एनी डायरेक्टली एनी फाइनेंशियल सपोर्ट. आई डू नॉट थिंक सो. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज अगर आपका फैमिली प्रॉब्लम वगैरह बहुत सीरियस हो जाता है, अगर वहाँ पर ले जाते हैं, वहाँ पर इट्स ए बिग ओशन इंडियन कॉन्सुलेट, उनको सही अटेंशन मिलना, सपोर्ट करना, वहाँ पर भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है. नाउ उनको तो वैसे भी जो लॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम्स व्हेन दे अकर विथ इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स, तो उनको भी थोड़ा हम लोग जानकारी देके उनको वी कीप देम अपडेटेड विद द इंफॉर्मेशन. कई बार ये भी हो जाता है कि इंडियन कोर्ट से ऑर्डर आता है ये इनका पासपोर्ट जो है तुम कॉन्फिस्केट करो करके. ऐसे ऐसे भी हुए हैं.
0: अच्छा.
1: तो इसलिए कॉन्सुलेट को इन्फॉर्म करके इन सम केसेस एटलीस्ट वो भी बहुत जरूरी हो जाता है. तो इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स एरिया दिस फैमिली सपोर्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक सपोर्ट टू हार्म प्रिवेंशन टू डोमेस्टिक वायलेंस. बढ़ता जाता है रिस्क एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट बोथ द वुमेन एंड द मैन. एक जमाने में ए वुमन यूज टू कम, वंस आई रिमेम्बर स्टिल, एक साल की बच्ची को लेकर रोते रोते सपोर्ट सेंटर में आती थी. फिर हमारे वहाँ पर एक हमारे को डायरेक्टर भी हैं, एक जसप्रीत चोपड़ा जी, अभी कम्युनिटी सर्विसेज में काम करती हैं. वो भी वॉलंटियर के रूप में उनको बैठ के बात करके सपोर्ट करती हैं. तो दैट वाज द सिचुएशन ए फ्यू इयर्स बैक. आजकल मेन फोक्स आर आल्सो इन ट्रबल.
0: यस,
1: आई हैवंट सीन जनरली अर्लियर ए मैन क्राइंग.
0: यस,
1: बट टुडे आई हैव सीन एट द सपोर्ट सेंटर मेन कमिंग देयर एंड वर्चुअली क्राइंग
0: एज अ डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम.
1: डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम. ओके, अभी एक केस मैं हैंडल कर रहा हूँ.
0: यस.
1: तो द सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग इज जब ये लोग वहाँ बैठ के किस लिए आंसू बहाते हैं, वाइफ डजंट गिव एक्सेस टू द किड. Basic thing. Obviously, kid is both parents, they require, parents. So there's one issue. Second, again, as I told you, visa is being used on the husband. Abhi bichara recently aaya hua hai. Oh, visa is being used. Tere ko wapas main bhej dunga aaj raat tak. You know, things like that. Hote rehte hai, kya kare? Whatever we can. To address the issues, hum karte hain.
2: Achha, isme ek angle aur aata hai.
1: Ji.
2: Ki... न्यूट्रिशन भी ज़रूरी होता है. शैलजा जी, न्यूट्रिशन अगर किसी विटामिन की कमी हो गई तो दिमाग वैसे ही ख़राब होने लगता है शायद.
0: बिल्कुल,
2: है ना?
1: ठीक है.
2: तो इसी पर एक वार्ता भेजी है रंजना जी ने. नेशनल न्यूट्रिशन डे अभी मनाया गया, तो उसे भी सुन लेते हैं.
0: बिल्कुल.
3: श्रोताओं, आज भारत में नेशनल न्यूट्रिशन डे मनाया जा रहा है. मैं आपके साथ इस वार्ता में शामिल होना चाहती हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि अच्छे पोषण और न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों है. हम सब जानते हैं कि सही न्यूट्रिशन ही सही विकास और सही स्वास्थ्य देता है. उन सब को हमें फिर से याद करना चाहिए इस नेशनल न्यूट्रिशन डे पे. स्वस्थ भारत की नींव पोषक भारत से ही बनती है. आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब भाग रहे हैं, काम के पीछे, सपनों के पीछे, जिम्मेदारियों के पीछे. लेकिन इस दौर में अक्सर हम सबसे ज़रूरी चीज़ भूल जाते हैं, अपना पोषण. क्यों ज़रूरी है पोषण? भारत में आज भी लाखों बच्चे कुपोषण से जूझ रहे हैं. कई महिलाएं आयरन की कमी से परेशान हैं और युवाओं में जंक फूड की आदत बढ़ रही है. पोषण सिर्फ खाने का नाम नहीं है, यह शरीर, मन और भविष्य की सुरक्षा है. और क्योंकि हमने कृष्णाष्टमी मनाया है, मैं कृष्ण के इस उल्लेख को आपके साथ साझा करना चाहती हूँ. कृष्ण ने गीता में कहा था, शरीर ही साधना का पहला साधन है. अगर शरीर स्वस्थ नहीं तो जीवन में कोई भी यात्रा पूरी नहीं हो सकती. राष्ट्रीय पोषण दिवस का उद्देश्य क्या है? इस दिन का मकसद है लोगों को जागरूक करना कि सही भोजन ही सही विकास देता है. संतुलित आहार बीमारी से बचाता है. पोषण सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हर उम्र के लिए जरूरी है. स्थानीय और मौसमी भोजन सबसे अच्छा होता है. सरकार, स्कूल, आंगनवाड़ी, अस्पताल सब मिलकर इसे फैलाते हैं और रेडियो दर्पण भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। क्या है संतुलित आहार? एक संतुलित थाली में अनाज, दाल और प्रोटीन, हरी सब्जियां, फल, दूध और दही और सबसे जरूरी पर्याप्त पानी। यह थाली सिर्फ पेट नहीं भरती, ऊर्जा, प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक संतुलन भी देती है। आज की दुनिया में पोषण का बहुत अधिक महत्व है। आज बच्चे मोबाइल पर खेलते हैं और बड़े स्क्रीन पर काम करते हैं और परिवार बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करता है। ऐसे समय में पोषण का महत्व और बढ़ जाता है। जंक फूड अगर स्वस्थ नहीं है, अगर उसमें सही मात्रा में संतुलित आहार नहीं है, तो वो तात्कालिक स्वाद देता है लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म में नुकसान करता है। घर का खाना प्यार, सुरक्षा और पोषण तीनों देता है। व्यस्त जीवन में भी 10 मिनट निकालकर स्वस्थ विकल्प चुनना संभव है। नेशनल न्यूट्रिशन डे का संदेश है कि स्वास्थ्य कोई विकल्प नहीं, यह प्राथमिकता है। पोषण एक संस्कार है। हम अपने बच्चों को पढ़ाई का संस्कार देते हैं, व्यवहार का संस्कार देते हैं, लेकिन खाने का संस्कार भी उतना ही जरूरी है। अगर घर में पोषण और भोजन बनेगा, अगर बच्चे फल और सब्जियां ज़्यादा पसंद करेंगे, अगर परिवार साथ बैठकर खाना खाएगा, तो यह सिर्फ भोजन नहीं, स्वस्थ पीढ़ी का निर्माण है। इन सब छोटी आदतों से एक बड़ा बदलाव हो सकता है। नेशनल न्यूट्रिशन डे हमें ये सिखाता है कि एक छोटे छोटे कदम हमें कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जैसे कि आप एक फल रोज खाएं, जंक फूड कम करें, बच्चों को पोषण की कहानियाँ सुनाएं, घर में रंग बिरंगी थालियाँ बनाएं, सब मिलकर घर में बनाने में और बच्चों को खिलाने में और हर किसी को अपना एक पर्याप्त न्यूट्रिशन लेने में मदद करें और सबसे ज़रूरी हर उम्र में स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, क्योंकि अंत में पोषण ही प्रगति है और स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ राष्ट्र का आधार। धन्यवाद।
4: Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Dharpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Dharpan Radio.
2: Dosto. बड़ी अच्छी वार्ता थी रंजना जी द्वारा। उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया कि न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है, और साथ में पता नहीं यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर कैसा है मुझे पता है, लेकिन परिवार का एक साथ टेबल पर बैठकर खाना
0: बहुत ज़रूरी है,
2: बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं हो पाता है। मैंने तो देखा है, अपने घर में भी देखा है और बाहर भी देखा है, बच्चों का जब मन आता है तब जाकर खा लेते हैं कुछ भी।
5: नहीं, ऐसा नहीं होता है। सब अपने अपने जगह बिजी रहते हैं, बच्चे अपने यूनिवर्सिटी जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, हस्बैंड्स के अपने अपने हॉबी है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट।
2: नहीं, डिफिकल्ट तो है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम दिन का एक खाना साथ में खाओ। और अगर रोज नहीं खा सकते तो सैटरडे संडे है उस दिन तो खाओ, लेकिन सबके अपने अपने कार्यक्रम होते हैं। प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर इतने ऑप्शंस हैं, इतने सारे ऑप्शंस हो गए हैं, और लोग अपने फ़ोन में बिजी हैं, बात करनी है घंटों बात करते हैं लोग करने वाले।
0: इंडिपेंडेंस है सबकी अपनी।
2: हाँ, सबकी अपनी अपनी, इसलिए
5: सबके पास अपने अपने ये फोन्स हैं, सब उसी में एंगेज रहते हैं। जो दूर वाले वो तो पास में है, जो पास वाले वो बहुत दूर हो जाते हैं।
1: जो एक जगह पे टेबल पे बैठते हैं फिर भी बच्चे मोबाइल फोन देखते हुए बैठ के खाना खाते रहते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो गनीमत है कि हम लोगों की जिंदगी अब उससे आगे बढ़ चुकी है कि हमें ऐसे सीन नहीं देखने पड़ते हैं, क्योंकि उससे भी हम लोगों का स्वास्थ्य जो था वो नीचे जाए।
2: अच्छा, और खास बात ये सुब्बाराव जी कि यंग फैमिलीज, दो हस्बैंड वाइफ या एक बच्चा रेस्टोरेंट में गए, बच्चा तंग कर रहा है, लो बेटा ये फोन रख ले, ये तो मतलब ये मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। लेकिन करें क्या, क्या करना चाहिए आप बताइए।
1: आई डोंट नो, आई मीन ये जो आप साइकोलॉजिस्ट और साइकाटिस्ट जो है, आप लोगों ने काफी इसके बारे में रिसर्च वगैरह किया होगा, तो जस्ट लाइक हम कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से उनको थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग करके उनको आगे ले जाना बहुत ज़रूरी है. और कई बार जब यू नो एक बच्चा 8-10 साल हो जाता है वर्चुअली 10-11 साल, अगर मान लो पेरेंट्स वांट टू गो टू किसी के घर में खाने के लिए जाना चाहेंगे, तो बच्चा कहता है नहीं आप जाओ पापा मम्मी, मैं घर में बैठ के अपना जो भी वीडियो खेलना है करते रहूँगा. वो नहीं आते हैं. और मैं समझता हूँ कि अगर हमारे घर कोई भी आ जाए इन दैट एज ग्रुप, मेरा एज ग्रुप को भूल के मैं उनके साथ समय बिताने के लिए कोशिश करता हूँ, बहुत ज़्यादा बात करके उनसे, लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन टॉक टू देम अबाउट देयर टीचर्स, क्या पढ़ाई कर रहे हैं वैसे. बट लेकिन थोड़ा समाज बदल रहा है, आई डोंट नो वेयर इज द आंसर.
0: बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूंगी सुब्बा राव जी, जैसे कि हमने डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में कहा था कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ में नहीं बल्कि बच्चों के भी बीच में होती है, पेरेंट्स के साथ होती है. यहाँ बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हो जाते हैं, तो वो अगर आपको कॉन्टेक्ट करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं?
1: When they come, the first thing is उनको बिठा के चाय पिला के बात करना बहुत ज़रूरी होता है, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, उनको कॉन्फिडेंस जो रखना बहुत ही ज़रूरी होता है. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, बहुत डेलिकेट हो जाता है हस्बैंड वाइफ के बीच में. मान लो वाइफ कम्स एंड रिपोर्ट्स, हाउ डू यू कॉन्टैक्ट द हस्बैंड एंड ब्रिंग देम ऑन द टेबल फॉर अ डिस्कशन? वहाँ पर भी हमें बहुत ही प्रॉब्लम होता है.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: फिर देन वी ट्राई टू लुक एट सम इंटरमीडिएटरी पीपल, क्या किसी को जानते हैं ये समाज इज स्मॉल आफ्टर ऑल, तो उससे भी हम कोशिश करते हैं. वी हैव गॉट लॉट ऑफ सक्सेसेस देयर, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट. ओके, तो ये देयर इज नो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल, इट्स ए रीजनेबली वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ सिचुएशन. ये पहली बात तो ये प्रॉब्लम शुरू नहीं होना चाहिए, बट अंडरलाइंग प्रॉब्लम इन मोस्ट ऑफ दिस केसेस इज मनी.
0: बिल्कुल.
1: फाइनेंशियल मैटर्स जो है आजकल स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया काफ़ी महंगी हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया. सो देयरफॉर व्हाट रियली हैपेंस इज द रियल प्रॉब्लम कम्स एट, लाइक फॉर एग्जांपल मी एंड माय वाइफ राइट फ्रॉम दोज डेज वी हैव अ सिंगल कॉमन बैंक अकाउंट. आजकल यू कांट इमेजिन अ सिंगल बैंक अकाउंट. सो इट्स हार्ड, आई डोंट हैव अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर.
0: यस, एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि उसमें आप क्या करेंगे कि लड़की के पेरेंट्स ने शादी कर दी ज़बरदस्ती कहीं इंडिया में जाके, लड़की का यहाँ बॉयफ्रेंड ऑलरेडी है, शादी करके उसका हस्बैंड यहाँ आ गया, माँ बाप ने कहा, मतलब सच्ची कहानी में बता रही हूँ आपकी, माँ बाप ने वो गए एयरपोर्ट पे लेने के लिए, लड़की नहीं थी तो उन्होंने पूछा कि वाइफ कहाँ है मेरी, तो उन्होंने कहा वो बिज़ी है या जो कुछ भी है. जब ये लड़का कई दिन तक वहाँ रहता रहा उसके बाद उसने कहा कि मैं अब तो अपनी वाइफ से मिल लूँ, तो गया वहाँ मिलने के लिए, तो वहाँ बॉयफ्रेंड ने दरवाज़ा खोल के लगाया उसको हाथ, और उसके बाद वो लड़का जो था वो ये सोचिए बेघर हो गया. वो लड़का ना उसके पास वीसा था ना उसके पास कोई पैसे थे, और वो दर दर भटकता रहा, उसको इसके पास भेजा, साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट एंड दैट बॉय. तो उसमें इस केस में आप क्या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से कुछ कर सकते हैं? कि
1: मैं समझ गया आपकी बात. ये reasonably common kind of cases.
0: Yes.
1: Even right now as we are speaking, ek do cases hamare bilkul similar to what you aapne jaisa kaha.
0: Bilkul.
1: Now, is cheez mein mere khayal whatever we have done so far, ye जरूर होता है. बॉयफ्रेंड कोई और है, शादी किसी और के साथ हो जाता है, ये कॉमन प्रॉब्लम है टुडेज वर्ल्ड, बिकॉज समाज बदल चुकी है.
0: बिल्कुल.
1: एंड वुमेन आर आल्सो वर्किंग समवेयर एंड एनीवे व्हाटएवर बी द रीजंस. लेकिन हम लोग क्या करते हैं इस केस में, जो भी एग्रीड पार्टी है उसके साथ बैठ के उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तैयारी करके इस पे हमें, देयर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स, वन इज अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकाटिस्ट टू लुक एट व्हाट हैपेंड टू हिज मेंटल स्टेट एंड गेट सम रिपोर्ट्स, द फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट इज यू नीड टू हैव ए वेरी वेरी गुड इमिग्रेशन एजेंट वर्किंग विथ यू, वेरी कॉन्फिडेंशियल रखें. अगर there are a lot of agents, a lot of Indian agents are there, a lot of non-Indian agents are there, jo bhi conference mein rakhe kaam kare, unko ye case handover karke, ye discussion karke inke saath, because पूरा डॉक्यूमेंटेशन यू नीड टू रिव्यू एंड सी what are the options this person can have.
0: Yes.
1: Most of the cases, they don't want to go back to India for whatever reasons.
0: Yes.
1: Whether economical reasons ho ya nahi to, whether India jaane se wahan par social problems ho, whatever the reasons.
0: Yes.
1: Whether it's a male or female, the same kind of situation. To unko yahan par settle karne ke liye, hum bahut koshish karte hain. Is pe, jaisa maine kaha, immigration agent, achha sa. होना चाहिए नॉलेजेबल एंड कॉन्फिडेंस रखे कॉन्फिडेंशियलिटी रखे और दूसरा हमें साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट की सपोर्ट और थोड़ा इन कॉन्स्टेंटली इंडियन सपोर्ट सेंटर में कोई उस केस को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करे कि किस स्टेज पे क्या इमिग्रेशन रिपोर्ट आया है वी आर नॉट प्रिवी टू दैट बट आया कि नहीं आया इतना पता करने के लिए तो ये करके इस केस को आगे बढ़ाते हैं हम लोग देयर इज नो अदर ऑप्शन ऑन दिस
2: इसमें क्या होता है बराव जी कि जब एक और इस तरह की प्रॉब्लम भी होती है कि यंग फैमिली आई उनके द हस्बैंड वाइफ दो बच्चे यंग फैमिली है वो अपना पहले स्ट्रगल करते हैं जॉब ढूंढते हैं बच्चों के स्कूल में करते हैं लेकिन अगर उनके साथ ग्रैंड पेरेंट्स हो तो बात एकदम बदल जाती है तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी होती है कि ग्रैंड पेरेंट्स की एब्सेंस की वजह से बच्चे उतना नहीं सीख पाते हैं जितना कि उन्हें सीखना चाहिए
1: ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है इट इज दिस अ वेरी पॉजिटिव वे जो हम लोग सोच के ग्रैंड पेरेंट्स होने से द इंटर जनरेशनल गैप जिसको हम कहते हैं तो दैट एड्स ए बिग वे इन पासिंग ऑन द कल्चरल वैल्यूज टू ग्रैंड चिल्ड्रन ये ज़रूर होता है एंड उससे थोड़ा और प्रॉब्लम भी बढ़ सकता है ऑन अदर साइड ऑफ द कॉइन
2: ठीक है
1: ओके वेदर इट इज़ फाइनेंशियल और डजंट मैटर वो होता है तो But a lot of people are not fortunate to bring their parents here or they may not exist also in this universe. So, aapne bilkul theek kaha hai, usse thoda sa, agar ho sake, intermediary. Lekin yahan par ek aur problem hai, if the girl's father or parents are there, tendency generally is to support their girl. उनको भी थोड़ा मीडिएटर जैसा बात करके दोनों को इकट्ठे लाने इकट्ठे बिठा के बात करके समझा के ये काम करना ज़रूरी होता है लेकिन बहुत केसेस में ऐसा
2: मुझे लगता है ऐसी इस तरह की प्रॉब्लम लेडीज के साथ ज़्यादा होती है
1: I won't single out ladies.
0: Yes, it's very complex.
1: Not fair to single out ladies. Maybe you're right. So,
2: ठीक है. अच्छा इसी के साथ साथ हमने पापा की बात शुरू की है. तो एक गीत और सुन लेते हैं.

0: थोड़ा ये मम्मी लोगों को भी ये पता करना।
1: अच्छा तो सुनिए ऐसा है कि हम हमारे जो श्रोता लोगों ने कुछ रिएक्शंस भेजे हैं तो उन्हें थोड़ा सा पढ़ देते हैं, और मिथिला प्रोग्राम हुआ था उसके रिएक्शन से उन्होंने लोगों को अच्छा लगा। ये तींदर जी बोलते हैं बड़ा अच्छा प्रोग्राम था मिथिला वाला, और इसके बाद हमारा श्रीमती लीला तिवारी जी बड़ी एक्टिव हैं, उन्होंने हमारे लिए कविता भेजी है। मैं उसकी एक लाइन तो पढ़ूंगा क्योंकि समय की कमी है। लीला जी आपको अगले प्रोग्राम में हम आपको बुलाने वाले हैं, आपसे तब बहुत सारी कविताएं सुनी जाएंगी। और विद्या कविता शीर्षक, पिता हमेशा हैं होते हैं, पिता आकाश है, आकाश में धूप है, धूप में कवच है, पिता हर्ष है, विचार विमर्श है, भटकने लगूं तो परामर्श है, पिता पहचान है, पिता लुकमान है, पिता के बिना हलकान है, पिता उपनिषद है, उपनिषदों में कठोपनिषद है, कठोपनिषद में नचिकेता है। वाह, बहुत अच्छी कविता लिखी है आपने, और आप हमेशा हमें भेजती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत सुंदर।
1: अच्छा उपाध्याय जी बोलते हैं, रंजना जी द्वारा प्रस्तुत आज का विचार अनुकरणीय है, समस्त श्रोताओं को फादर्स डे की बधाई। आज आशा करते हैं प्रदीप जी, आशमा जी और शैलजा जी फादर्स डे संबंधित रोचक जानकारी और मनोरंजन गीत हम लोगों के लिए लाए हैं। ओम व्यास जी की प्रासंगिक कविता का सुंदर वाचन ये आपके लिए शैलजा जी। ब्यूटीफुल स्टार ऑफ द प्रोग्राम जसप्रीत चोपड़ा जी हैं, हैप्पी फादर्स डे शैलजा जी, योर पोएम वॉज ऑसम एंड हार्ट टचिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन सुब्बा राव जी फॉर हिज कंट्रीब्यूशन एंड डेडिकेशन टू द कम्युनिटी, वी आर प्राउड ऑफ योर कमिटमेंट। और इसी के साथ साथ हम एक सूचना और दे दें, हमें कुटुंब संस्था ने भेजी है उत्सव मल्टी कल्चरल फेस्टिवल 2026 20 सितंबर को होगा, इसके लिए संपर्क कर सकते हैं अशोक गुप्ता को 04128320 48, या राजगढ़ को 04117661700। अच्छा हेमलता जी हमारी डेडिकेटेड लिसनर हैं, हैप्पी फादर्स डे टू दर्पण रेडियो एंड योर टीम एंड ऑल माय फ्रेंड्स, वेरी नाइस प्रोग्राम, फादर इज़ ऑलवेज इन माय हार्ट, थैंक्स, माय फादर इज़ नॉट विद मी बट ही इज़ ऑलवेज इन माय हार्ट अंटिल आई डाई। यतीन जी, सुब्बा राव जी इज लाइक फादर फिगर सो मैनी फॉर सो मैनी, हैप्पी फादर्स डे सुब्बा राव जी। आप
0: थैंक यू
2: सुब्बा राव जी, ये यतीन्द्र जी के फादर फिगर नहीं हैं आप, लेकिन जिन लोगों को आप करते हैं सहायता उनके आप फादर फिगर हैं।
0: थैंक यू जी,
1: क्योंकि आप पता नहीं, पूछना पड़ेगा यतीन्द्र जी से।
2: क्या पता यतीन्द्र जी सोच रहे हो कि आप उनके फादर फिगर हैं।
0: थैंक यू जी
2: क्लैरिफाइंग।
1: शरता सोनी जी लिखती हैं, वेरी नाइस टॉक, वेरी इंफॉर्मेटिव, इट्स सो गुड टू नो दैट सुब्बा राव जी एंड मिसेस सुब्बा राव इज एड्रेसिंग द इश्यूज विद सो टेक्निकली एंड प्लान्ड वे। राजगढ़ जी कहते हैं, ग्रेट वर्क यू हैव बीन डूइंग सुब्बा राव जी, कीप गोइंग एंड कीप गोइंग, कम्युनिटी नीड पीपल लाइक यू एंड योर वाइफ। अच्छा लीला तिवारी जी कितनी अच्छी अच्छी कविता लिखती हैं,
2: तुरंत लिख देती हैं, कोई सब्जेक्ट वो दीजिए मिनटों में उनकी कविता तैयार हो जाती है।
1: अच्छा सुनिए, मेरी थाली मेरा स्वास्थ्य सेहत का है, सुखमय संसार शाकाहारी संतुलन भोजन, रोग न आने पाए द्वारा, सजे रंग से थाली अपनी स्वास्थ्य शिखर छू जाएगी, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह में मिलकर अलग जगाएगी। वाह, देखिए हमारा जो न्यूट्रिशन का वार्ता थी उसके संबंध में उन्होंने लिख दिया है। अच्छा इसके बाद अमिता श्रीवास्तव जी बोलते हैं, ब्यूटीफुल विचार और भजन के साथ प्रोग्राम के अच्छी शुरुआत, शैलजा जी के पोएम और फादर्स डे पर बहुत बहुत लाजवाब एंड हार्ट टचिंग है, सुब्बा जी राव का योगदान कम्युनिटी के लिए सराहनीय है, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम चल रहा है, आनंद आ रहा है, थैंक यू सो मच दर्पण टीम। ऋचा जी, आजकल के बच्चे कोई रूटीन या नियम फॉलो नहीं करना चाहते। ठीक कह रही हैं आप ऋचा जी। जयरामन जी कहते हैं, फैमिली गेट टुगेदर इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द लिविंग। ऋचा जी, इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन डिस्कशन। जयराम जी यस ट्रू, ऋचा जी के बारे में कहते हैं कि वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। अच्छा इसके बाद हेमंत, very informative, insightful program. A heartfelt thanks to Subbar Rao ji for his dedicated work for our community. तो ये सुब्बा राव जी, आपने यहाँ आकर हमारे
2: आपने दिल जीत लिया है आज सबका। और मैं इसी के साथ ये कहना चाहूँगी कि आज सूर्य जी नहीं है हमारे साथ, लेकिन आपका जो राज है आपकी सक्सेस का, उसके पीछे विदाउट बीइंग ए फेमिनिस्ट जो रोल है वो डॉक्टर सूर्या का, वो असीमित है।
0: थैंक यू।
2: और सूर्या जी आप सुन नहीं रही हैं क्योंकि आप प्लेन में बैठी होंगी, लेकिन हम आपका बहुत ही बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने इतनी प्रेरणा दी है सुब्बा राव जी को कि इतना बड़ा उन्होंने कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया है। तो आपको सच में साधुवाद है, आपको नमन है कि आपने हमारी भारतीय प्रवासी भारतीय एक समुदाय के लिए आपने जी जान से जो समर्पण किया है वो प्रशंसनीय है।
1: नहीं, बहुत अच्छा है साहब, ऐसा
2: हर क्षेत्र में आपने किया है,
1: हर क्षेत्र में एक्चुअली। और ये है कि आप इसी तरह से करते रहिए, हम लोगों की प्रेरणा का स्रोत बने रहिए और हमसे हमेशा आप जुड़े रहिए, क्योंकि आप इतने सारे कार्यक्रम करते हैं। आपने शटल हायर स्पार्क शटल बस सर्विस शुरू की, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप बता सकते हैं लोगों को कि आप और क्या कर रहे हैं। हालांकि आपका लोड बढ़ेगा, लेकिन आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप
2: बिल्कुल और बिल्कुल कि अगर आपका स्वास्थ्य इसी पे डिपेंड करता है तो आप खूब काम कीजिए
1: काम कीजिए और लोगों से करवाइए, क्योंकि उनका भी स्वास्थ्य
2: बिल्कुल क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपका लक्ष्य है जीवन में तो आपके लिए बहुत बड़ा ये स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा सोर्स है।
0: थैंक यू जी, बहुत अच्छा कहा।
2: और आप हमारी फीडबैक से आपने देखा होगा आज आप स्टार हैं इस प्रोग्राम के कि आपने दिल जीत लिया है सारे हमारे श्रोताओं का।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: नहीं जी, थैंक यू।
1: हमारे कार्यक्रम में आते रहिए, लेकिन अभी रुकिए, हम आपको एक और इसी बात पर सुंदर सा गीत सुनाते हैं,
0: जरूर
1: फिर बात को आगे बढ़ाएंगे
2: आपके पिताजी के लिए श्रद्धांजलि के रूप में।
0: थैंक यू जी।

0: करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स।
1: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय अब समाप्त होने जा रहा है। मैंने सोचा था कि अगर समय मिला तो एक कहानी जो मैंने लिखी है और उसे सुना देते हैं, क्योंकि एक दिया जो है वो कितने सारे दिए प्रज्वलित कर सकता है।
2: हाँ।
1: और हमारे सुब्बा राव जी वही हैं। देखिए, हम उसी के बारे में ये कहानी है, दिया और अनगिनत रोशनी।
2: तो आपकी ये कहानी स्वरचित है।
3: दिल्ली के छोटे से मोहल्ले में रामलाल नाम का एक सब्जी बेचने वाला रहता था। सुबह जल्दी उठकर वह अपनी ठेली लगाता, दिन भर मेहनत करता और मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता। एक शाम सर्दी के दिनों में उसने देखा कि उसकी दुकान के पास एक बूढ़ी औरत ठंड से कांप रही है। उसके पास ना ओढ़ने को कुछ था ना खाने को। रामलाल के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, फिर भी उसने अपनी एक पुरानी शॉल उतार कर उसे दे दी और बचे हुए सब्जी में से कुछ आलू भी उसके हाथ में रख दिए। उस बूढ़ी औरत ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। रामलाल को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि उस पल को एक राहगीर देख रहा था। मोहन नाम का एक कॉलेज छात्र जो अपने पिता के बिजनेस में मदद करने वाला था। उस रात मोहन देर तक सोच में डूबा रहा। अगले दिन उसने अपने पिता से कहा, हमारी दुकान में हर महीने कुछ खाना ज़रूरतमंदों के लिए भी रखें। पिता हैरान हुए पर मान गए। ये छोटी सी शुरुआत थी। मोहन ने कुछ साल बाद अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा फूड बैंक शुरू किया। धीरे धीरे प्रयास बढ़ता गया। जो लोग कभी इस फूड बैंक से मदद पाते थे, बड़े होकर खुद दूसरों की मदद करने लगे। एक शिक्षक ने अपने स्कूल में बच्चों को ये कहानी सुनाई और बच्चों ने मिलकर अपनी कॉलोनी में एक साझा दान पेटी शुरू की, जिसमें हर घर से थोड़ा अनाज इकट्ठा होता। बरसों बाद रामलाल जब बूढ़ा हो चुका था, एक दिन वही मोहन जो अब खुद एक सफल व्यापारी बन चुका था, उसकी ठेली पर आया। उसने रामलाल को पहचान लिया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आपको याद नहीं होगा पर आपकी उस एक शॉल ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। रामलाल हैरान रह गया। उसे तो वह शाम भी ठीक से याद नहीं थी। उसके लिए वह सब एक इंसान की मदद करने का साधारण सा पल था, लेकिन उसे एक साधारण पल से जो लहर उठी थी वह अभी फैल रही थी। हर उस परिवार में जिसे कभी खाना मिला, हर उस बच्चे में जिसने दूसरे को देना सीखा, हर उस दिल में जिसने ये जाना कि दया कभी छोटी नहीं होती। कहते हैं एक दिया जलाने से अंधेरा उतना कम नहीं होता जितना वह हज़ार और दिए जलाने की ताकत रखता है। रामलाल ने बस एक दिया जलाया था, बाकी रोशनी समाज में खुद फैला दी और आज तक फैल रही है उन गलियों में भी जहां रामलाल कभी गया भी नहीं।
1: तो ये थी कहानी। शैलजा जी, आपको पसंद आई कि नहीं?
2: वाह, ये नहीं, आप तो बिल्कुल लेखक हो सकते हैं। इस कहानी से अब आप आगे बढ़िए और आप किताबें लिखिए।
1: कोशिश जारी है। कोशिश जारी है
2: ये, लेकिन आपका पहला अटेम्प्ट नहीं है, या पहले भी लिख चुके हैं कहानियां? लुकता लगता है।
1: हाँ, थोड़ा बात मैं लिखता रहता हूँ अपने जीवन के बारे में और भी कुछ कुछ, तो आपको थोड़ा सा बाद में बताया जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि अभी ये लीला तिवारी जी ने ये बहुत प्रेरक कार्यक्रम के लिए दर्पण रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये राजीव गुप्ता जी लिखते हैं, इम्प्रेसिव एंड इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम, फादर कैन प्रोवाइड सम सपोर्ट टू आवर चिल्ड्रन बट लाइक अम्ब्रेला इन अ स्टॉर्म, समटाइम्स ही फाइंड्स हिमसेल्फ हेल्पलेस बट ही कीप्स गोइंग। निराली दास्ता है ये, दिए और अंधेरे की छाते और बरसात की, पिता और बच्चों की मुश्किल में सहारा देने खुद ही फना हो जाते हैं। अलका गिरधर जी लिखती हैं, प्रोग्राम हमेशा की तरह बहुत अच्छा था और यदि इतनी सारी जानकारी से ओतप्रोत हो तब तो बाद में एक बार फिर से सुनना पड़ ही जाता है। सुनील श्रीवास्तव जी कहते हैं ग्रेट रेडियो प्रोग्राम इंक्लूडिंग सोशल वर्क्स अचीवमेंट्स बाय सुब्बा राव जी। सुब्बा राव जी आपकी
2: सुब्बा राव की जय जयकार हो रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। और सुब्बा राव जी आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसी तरह से हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते रहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि अपने जो आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको बोलिए कि अगर वो किसी तरह की कम्युनिकेशन की डिग्री कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमारे प्रोग्राम में आकर यहाँ थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले सकते हैं।
2: इन्हीं प्रदीप जी की कुर्सी में बैठ सकते हैं,
1: बिल्कुल बैठ सकते हैं
4: पोटेंशियल।
1: और फिर ये है कि किसी और को तो बैठना ही है इस कुर्सी पर इवेंचुअली, लेकिन ये है कि बच्चे लोग अगर आकर रेडियो में इंटरेस्टेड हैं, उनमें टैलेंट है, तो ये है कि दे आर मोस्ट वेलकम। हम तो ढूंढते रहते हैं कि यंग लोग, लेकिन भाग जल्दी जाते हैं।
2: ये तो उनके जो रचनात्मक क्वालिटीज हैं उनको डेवलप करने के लिए अगर वो कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं, कहानी, कविता, जो कुछ भी, क्योंकि यही होता है कि जो आगे चल के बड़े बड़े राइटर्स होते हैं उनको बचपन में कहीं से इंस्पिरेशन मिलता है। एंड आई थिंक इफ यू कैन टेल देम दैट दिस इज अनदर एवेन्यू वेयर दे कैन ट्राई देयर क्रिएटिविटी, बिकॉज आपको शब्दों में तो हम कह ही नहीं सकते हैं कि आपने जो पूरा कंट्रोल किया है यहाँ का, कि हम लोगों को लीडरशिप चाहिए किसी भी कम्युनिटी के लिए, अगर लीडरशिप हमारी अच्छी है तो वी फील कॉन्फिडेंट। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट बिहाइंड यू कि आप हमको रास्ता दिखाएंगे। तो बहुत बहुत आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है, साधुवाद है कि आप इसी तरह से आपको चुनौतियों से आपको प्रेरणा मिलती रहे और आप अच्छा खाना खाते रहे
1: और न्यूट्रिशन पूरा रखें
2: और सूर्य जी आपकी सपोर्ट बनी रहे, इनके अपने पैरों पर खड़े हो रहे।
4: धन्यवाद जी हमें मौका देने के लिए, समाज से बात करने के लिए मौका देने के लिए आप सबको धन्यवाद। एंड देखते हैं आगे जाते जाते और भी
1: हमसे जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए। आपको नमस्कार।
4: नमस्ते।
1: ऐसे के साथ साथ हम आपको एक और गीत अच्छा सा सुनाने जा रहे हैं।

0: दोस्तों, हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने जा रहा है। आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके रिएक्शंस ये बहुत अच्छे लगते हैं, हमें इस तरह से प्रोत्साहित करते रहिए। और अगले सप्ताह के लिए हमें आज्ञा दीजिए, हमारी अगली टीम आपसे मिलेगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा।
1: आपकी फीडबैक से भी यही लगता है। लेकिन अगली बार बहुत दिनों बाद हम लोग बुलाएंगे सुबह जी को। अगले हफ्ते तो नहीं बुलाएंगे, उसके बाद में बुलाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।